0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, इस शेर का अर्थ ये है, या यूं कहें कि इन खूबसूरत लाइनों का मतलब ये है कि जहां एक सम्मान है, आत्मसम्मान की बात है, खुद की पहचान की बात है, और समाज में एक अलग जगह बनाने की पहचान है। ये खूबसूरत लाइनें यही कहती हैं। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, जहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, पढ़ने पढ़ाने की बातें होती है, जिंदगी को जीने की बातें होती है आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। वैसे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहां से ऑन एयर होते हैं। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, जिसे हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आसपास हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। पत्रकारिता क्षेत्र के ऐसी दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं अजय सिंह जी, जो कि सीनियर कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे एक अनुभव के साथ आप आते हैं। और जितना अनुभव सर का है, तो उस अनुभव को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में, यानी कि इन बातों के बारे में बात होना बहुत जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ, द पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, स्टार न्यूज, समय, बहुत जगह सर ने काम किया, तो बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ आज वो शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव आप रहे हैं, और आपने जो सेवाएं दी हैं वर्ष अक्टूबर 2019 से लेकर 2025 तक, यानी कि सितंबर 2025 तक अपनी सेवाएं दी हैं। तो इस अनुभव के साथ आज की हमारी शख्सियत हमारे बीच है। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: माफ कीजिएगा सर अगर मैं कहीं कुछ तारुफ में कुछ कम बात रख पाया, क्योंकि बहुत बहुत बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं, लेकिन जितना समय मिला मैं आपके बारे में कह पाया।
1: नहीं, तारुफ आपने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया।
0: ज्यादा, ये तो जरा नवाजी, प्यार है सर आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है शारदा यूनिवर्सिटी के इस आंगन में, प्रीमिसेस में आकर?
1: नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अंदाज नहीं था कि कैंपस इतना बड़ा है और इतना वाइब्रेंट है। तो जब मैं पहले आया तभी मुझे लगा कि अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम कर रहा है, तो देख के अच्छा लगा।
0: वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थोड़ा मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप मुझे, मेरे लिसनर्स को बताएं, मेरे स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का एक स्कूल है जहां स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है तो वो उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं कि ये जो सफर आपका रहा है, कैसा सफर रहा, सुहाना सफर रहा या अड़चने भी बहुत ज्यादा आई, और उन अड़चनों को पार करते हुए आप आज समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, जिंदगी जैसे चलती है वैसे ही चली। और मैं, मुझे याद है कि मैं 1984 के आसपास मैं बैंक में था, और बैंक में मैं थोड़े दिन आगरा में काम किया, और उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चला आया। टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी स्कीम होती थी, और ये बात है 85 की
0: जी।
1: और वहाँ से फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा। 91 में मैं चला गया था बिहार इकोनॉमिक टाइम्स में
0: जी, जी।
1: फिर उसके बाद मैं लखनऊ फिर आ गया आनंद बाजार के साथ
0: जी।
1: और फिर मैं 95 के आसपास दिल्ली आ गया था, और तब से मैं दिल्ली में हूँ। तो उसमें हमने पायनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ईटीवी, स्टार न्यूज, और न्यूज एक्स, फिर उसके बाद फर्स्ट पोस्ट और गवर्नेंस नाउ जो फोर्टनाइटली थी
0: जी।
1: तो इस तरह के मैगजीन्स, मैगजीन और डिजिटल जो नए नए उस समय आए थे, हमारे ख्याल से फर्स्ट पोस्ट पहला डिजिटल इफेक्टिव एक आउटलेट था
0: जी।
1: तो उसमें काम करता रहा, और फिर अचानक 2019 में मैं भारत के पति का
0: मैं इसके बारे में जरूर जानूंगा, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन का खजाना है और मैं नहीं चाहता कि कम समय में ये बातें हो जाएं। मैं जरूर सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो आपने मुझे बताया कि बैंक सेक्टर में आप काम कर रहे थे, ये सवाल आता है, और जिस तरीके से आपने अपनी लाइन चेंज की, क्या उस वक्त पत्रकारिता की डिग्री आपके पास थी या आपने फिर वो पढ़ाई की, या अनुभव के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, इसके बारे में बातें होंगी जरूर। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, यानी कि मैं म्यूजिक की बात करना चाहूंगा। आपकी मुस्कान वाकई बहुत अच्छी है और मैं इससे समझ पा रहा हूँ कि आप खुश रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बहुत सारे सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं म्यूजिक की बात आपसे करता हूँ कि जब स्ट्रेस आपके आसपास होता है या ज्यादा आप खुश होते हैं तो कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं या सुनाना

0: चाहते हैं मेरे लिसनर्स को?
1: कोई स्पेसिफिक गाना तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं जो कि और ओल्ड सॉन्ग्स हैं,
0: ओल्ड सॉन्ग्स,
1: क्योंकि थोड़ा सा उसमें एक एटर्नल वैल्यू रहती थी. तो अगर आप कोई भी सॉन्ग ले लें, कैफी साहब का या आप शैलेंद्र का, तो वो सॉन्ग्स ऐसे थे जो कि सुनने में अच्छा लगता था.
0: चलिए, बॉबी फिल्म का शैलेंद्र साहब की रचना से सजा हुआ गाना मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ. सो दोस्तों, आप कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ आज एक शख्सियत जुड़ रही है, आप है अजय सिंह सर जी, जो कि मीडिया इंडस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं, यानी कि 4 दशकों के अनुभव के साथ आते हैं. तो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनते हैं और जो सवाल मैंने सर के साथ किया उसका आंसर जानेंगे जरूर एक छोटे से अंतराल के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं क्योंकि शारदा विश्वविद्यालय का SSMFE यानी शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का ये एक सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जहां सीखने सिखाने की बातें होती हैं, जिंदगी को जीने की बातें होती हैं। जब आप यहां आते हैं तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि सीखेंगे तो सही लेकिन जब अनुभवी गुणी लोग आपसे जुड़ते हैं तो उनके साक्षात्कार को सुनके या उनके नजदीक बैठकर बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं मीडिया क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें नाम आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया की ही बात हो रही है तो हमारे साथ हैं अजय सिंह जी जो कि मीडिया इंडस्ट्री से आप आते हैं, 4 दशकों का अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव अलग अलग चैनल के साथ। तो सर एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सवाल मैंने आपसे किया था, सवाल मेरा यह था क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप बैंक सेक्टर में काम कर रहे थे। मैं ही क्या सर, किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि बैंक सेक्टर से निकलने के बाद आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। क्या उस वक्त पत्रकारिता क्षेत्र में आपने कोई पढ़ाई कर रहे थे या डिग्री हासिल थी या एक जुनून था, नहीं मुझे मीडिया करना है, तो इसके बारे में प्लीज बताइए।
1: नहीं, मेरे फैमिली में था, पत्रकारिता का एक कल्चर भी था,
0: खून में था ये
1: जी। तो एक तो वो था और दूसरा मैंने MCOM किया था PHU से
0: जी।
1: तो वहाँ से एक ये जो नेचुरल वो होता है उसमें हम बैंक में गए और बैंक में हम, लेकिन बैंक में हम, हमारा कोई मन नहीं लगा। हम तीन महीने रहे होंगे मुश्किल से।
0: सरकारी जॉब थी उस वक्त?
1: सरकारी जॉब थी।
0: हाँ, क्या बात है।
1: तो वो छोड़ के फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में उस समय एक ट्रेनी स्कीम आता था।
0: अच्छा।
1: तो मैं वहाँ चला गया और उससे हमने कानपुर में शुरू में हमारी पोस्टिंग हुई।
0: हाँ।
1: करीब 7-8 महीने मैं वहाँ रहा। हाँ। कानपुर, उसके बाद मैं फिर लखनऊ आ गया। तो जब लखनऊ आया तो मैं वहाँ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया में। और पत्रकारिता में मैं हमेशा रिपोर्टिंग साइड में रहा
0: जी, ऑन ग्राउंड रहे
1: और हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहा। तो हार्डकोर रिपोर्टिंग साइड में रहने से ये हुआ कि हमें घूमने को बहुत मिलता था या चीजें, हाँ, चीजें जो जमीन पे हो रही हैं उसको जानने का मौका मिलता था। तो वो मैंने किया 91 में मैं बिहार चला गया और बिहार में मांग के गया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में उस समय गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही वो पार्ट है लेकिन अपॉइंटमेंट अलग लेटर होता है उसका
0: जी।
1: तो मैं 91-93 इकोनॉमिक टाइम्स में रहा बिहार में और फिर उसके बाद आनंद बाजार ग्रुप के साथ आ गए,
0: बड़े-बड़े चैनल्स के साथ आपने,
1: टेलीग्राफ के साथ आए, फिर लखनऊ में आए।
0: लखनऊ,
1: हाँ, तो लखनऊ से फिर मैं दिल्ली आ गया।
0: ओके सर, आपने जिक्र किया कि जो मैं समझता हूँ कि जो एक टर्निंग पॉइंट रहा आपका, बैंक सेक्टर से निकलकर आपने मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और आप बहुत बड़ी बात हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि उस समय ट्रेनिंग का एक पार्ट आपने एक आर्टिकल देखा, पढ़ा, अप्लाई किया। तो ये जो प्रोसेस आज के समय में जैसे निकलती हैं वैकेंसी की, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग की हमें एक आवश्यकता है, तो उस समय भी ये हुआ करता था लेकिन शायद जागरूकता की कमी होगी या जिनके पास अवेयरनेस थी तो वो ज्वाइन कर गए आपकी तरह। तो क्या कहना चाहेंगे आपको अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में?
1: देखिए, पत्रकारिता में वैसे तो सच बताएं तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में जो देखते हैं और फिर आप लिखते हैं,
0: क्या बात,
1: और जब डेस्क पे वो एडिट होता है तब आप ज्यादा चीजें जानते हैं। लेकिन 85 वगैरह में कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे और कोई फॉर्मल एक एजुकेशन पत्रकारिता की, एक दो इंस्टीट्यूट थे जो कि उसको लेके चलते थे, पर टाइम्स ऑफ इंडिया का था।
0: अच्छा,
1: टाइम्स ऑफ इंडिया के पास था। हाँ, ट्रेनिंग स्कीम जिसमें आपके बहुत लोग आए, MJ अकबर वगैरह सब लोग उसी में आए, SP सिंह जो पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता के, उदयन शर्मा, इस तरह के बहुत लोग आए थे जो कि उसी से आए थे। लेकिन हमारा वो नहीं था, वो ट्रेनिंग जो था वो उनका दिल्ली का था
0: जी,
1: बॉम्बे और दिल्ली का था,
0: लखनऊ में नहीं,
1: हमारा लखनऊ में था
0: जी।
1: तो लखनऊ में ऑन जॉब ट्रेनिंग वो देते थे और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, फिर आपको स्टाफ में रखा जाता था, फिर उसके बाद और सीनियर्स होते थे जो गाइड करते थे।
0: बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत सच्ची और अच्छी बात आपने कही है कि गाइड करते थे, मार्गदर्शन आपको मिला। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें सर, हम ये महसूस करते हैं कि मुझे अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं वही आने वाले ट्रेनी के साथ करूंगा, और अक्सर हमने ऐसा देखा भी है। लेकिन जब आप उस दौर से निकल कर आ रहे थे या आए हैं, तो उस समय को और आज के समय को कैसे नाप तोल करते हैं, कितना परिवर्तन आ गया सर मीडिया इंडस्ट्री में?
1: नहीं, मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल बदल गया है। मैंने तो टाइपराइटर से शुरू किया था
0: जी।
1: मैं मेरे पास रिमिंगटन का एक टाइपराइटर होता था, और मुझे याद है कि अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, और रथ यात्रा के बाद वाली यात्रा थी। रथ यात्रा में तो वो अरेस्ट हो गए थे बिहार में, लेकिन जब वो यूपी में घुसे तो मैं उनके साथ साथ चल रहा था
0: जी।
1: तो मेरे गोद में टाइपराइटर रहता था और उसमें मैं लिखता था, और उस जमाने में फैक्स आ गया था, तो फैक्स से मैं स्टोरी फाइल करता था। तो वहां से लेके आज तक चीजें बहुत बदल गई हैं। मुझे याद है बरेली में एक बार दंगे हो गए
0: जी,
1: और मैं वहां पे गया एज रिपोर्टर। ये बात है शायद 88 की
0: जी।
1: तो उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय फैक्स वगैरह नहीं था।
0: अच्छा, उस समय तक नहीं आया?
1: नहीं, नहीं आया था। तो टेलेक्स के लिए मैं गया, वो CTO होता था
0: जी,
1: सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस
0: जी।
1: तो CTO पे मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका टेलेक्स से हम भेज सकते हैं? तो टेलेक्स चलता नहीं था, तो मतलब हम लोग को भाग के आना पड़ता था। 91 में पीलीभीत में कुछ सिखों को बस से उतार के मारा गया, वो स्टोरी मैंने ब्रेक की। लेकिन मुझे 2 दिन बाद लौट के आना पड़ा, और लखनऊ में आके मैंने वो स्टोरी फाइल की, फिर वो गया दिल्ली और तब वहां पे छपा। तो हमारे पास टाइम गैप 2 दिन होता था, अब तो 1 सेकंड का नहीं है।
0: और 1 सेकंड भी अगर आपने डिले किया तो आपका सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो उस न्यूज के साथ आगे बढ़ जाता है।
1: हाँ।
0: और दूसरी जगह शायद वो न्यूज अगर डिले हो रही है तो वो बासी रूप में हमारे सामने आ रही है।
1: हाँ,
0: तो ये आपने परिवर्तन कहीं ना कहीं देखा।
1: टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया। टेक्नोलॉजी ने देखिये,
0: लिहाज से मैं आपसे जरूर जानना समझना चाहूंगा सर कि कितना सिद्धांतों के साथ समझौता किया जा रहा है। आज आपको भी बहुत बुरा लगता होगा कि हम उस दौर से निकल कर आए जहां हमने बहुत गहराई से काम किया है, शिद्दत से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और आज के समय में हम देखते हैं कि वो सारी चीजें नहीं है। आज के समय में हम ये देखते हैं कि सर एक यूट्यूबर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, एक इन्फ्लुएंसर भी पत्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके एथिक्स पता नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ी चिंगारी भड़क सकती है, बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये बहुत खूबसूरत सवाल आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया, तो यहां पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया कि आप रेट्रो यानी कि पुराने गानों को अपने दिल के आसपास रखते हैं, और शैलेंद्र साहब का जिक्र किया, तो क्यों ना मैं एक और गाना उन्हीं के पिटारे से निकाल कर लेकर आता हूं आपके लिए। तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक सर आपके लिए सिर्फ सरोशादा 90.8 FM पर। दोस्तों आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। पत्रकारिता क्षेत्र के दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत एक अच्छे अनुभव के साथ आप आते हैं और उस अनुभव को ऐसे गुणी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर आप बैठते हैं, संगत करते हैं, उनसे आप सीखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है और बहुत कुछ आप हासिल करते, आप समाज में एक सकारात्मक दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 दशक के अनुभव के साथ, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुके हैं अजय सिंह जी। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था, मैं उसको अब दोहरा देता हूँ क्योंकि कुछ लिसनर्स हमारे साथ जुड़े होंगे। हमने बात की थी कि सिद्धांतों की, उस समय के जो सिद्धांत थे आज के समय में जब चीज़ों को आप देखते हैं तो बहुत परिवर्तन नजर आया होगा, जमीन आसमान का परिवर्तन होगा। आज के समय में जब हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया टेक्नोलॉजी का, सेकेंड्स में बातें आगे तक चली जाती हैं। वहीं यूट्यूबर हैं सर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको शायद कुछ मालूमात हासिल नहीं है, कुछ ऐसा गलत अगर वो प्रेषित कर देते हैं, कुछ कह देते हैं।

0: को मार के वहां पे खेती हो गई थी।
1: जी, जी, जी।
0: आज के दिन ये संभव नहीं
1: है।
0: तो अगर यूट्यूबर एक ये कर देता है, वो ट्रेन जर्नलिस्ट नहीं है और वो आपके लिए ये मुश्किल करता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये घटना यहाँ हुई है, तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने ये तो कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर उसके हाथ में कैमरा है, स्मार्टफोन है, तो वो चीजें लेके और आपको दिखा देगा। अब रही बात उसकी कि उसमें इथिकल सवाल और ये सब है, ये सवाल पहले भी थे, ये सवाल आज भी है
1: और आगे भी रहेगा
0: और वो आगे भी रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पत्रकारिता में होने से या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन में होने से, हम आपको बता दें कि आप इस देश में अब रॉयट्स आसानी से नहीं होते हैं। अगर कुछ भी चीज होती है, कोई भी इनजस्टिस होता है, तो लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग जानते हैं, वो बोले ना ये अलग बात है। तो अब वो चीज खत्म हो गई है। तो टेक्नोलॉजी ने जहां पे आपको इम्पावर किया है, वहां पे उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट्स आप डील कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को डील चाहिए भी। हमारा कहना यह है कि जो पत्रकारिता का एसेंस था, जो पहले था, वही आज भी है। और सच बताएं तो नए लड़के जब मैं देखता हूं तो मुझे उन पे ज्यादा विश्वास होता है। हमें लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं एंड दे आर वेरी गुड। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो बात का जनरेशन, हाँ उसके लिए चैलेंज हो गया है और वो चैलेंज इकोनॉमी की वजह से हुआ है। क्योंकि आप देखिए तो जो न्यूज प्रिंट की इकोनॉमी जो हम लोग के टाइम में थी, वो इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है कि मतलब हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन है और पैसा वो देता है कि नहीं। तो एक मीडिया सेक्टर में, पूरे मीडिया सेक्टर में वो एक सीरियस प्रॉब्लम आई है जिससे कि डील कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है, जो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्शन किया है वो है डिसरप्शन।
1: चूंकि बात बहुत अच्छी आप कर रहे हैं सर, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, मेरे श्रोता भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सर, कोई अगर आपकी तरफ से आपके अनुभव के आधार पर कोई आप एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, दिशा निर्देश आपके ये रहें कि अगर आपको मालूमात नहीं है तो उस पर बढ़ चढ़ कर ना बोलें, क्योंकि माहौल ख़राब हो सकता है और बात बिगड़ सकती है और जब न्यूज़ आगे फैल जाती है तो दिक्कतें परेशानियाँ भी, यूँ कहें कि वो पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज़ कहाँ से क्रिएट हुई थी। फेक न्यूज़ भी आज के समय में बहुत ज़्यादा है, चैनल पर उसको वेरीफाई किया जाता है, तब बड़े बड़े चैनल उस पर आगे अपनी बात रख पाते हैं और पब्लिक अवेयर हो रही है। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के समय में लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं, इट्स राइट और नॉट। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खुद से पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मतलब इसीलिए कुछ पता ही नहीं?
0: देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि पत्रकार कोई खुद से नहीं बन सकता है। आप एक सर्टेन ट्रेनिंग होती है और जर्नलिज्म के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल इथिकल दोनों होती
1: है।
0: तो वो आप में अगर नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए पत्रकारिता अलग है। जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो एक अलग जॉब है।
1: यस, उस कैटेगरी में नहीं,
0: वो नहीं आएंगे, पत्रकार में नहीं आएंगे। अच्छा, इसी वजह से आपको बताएं, जैसे अभी तो वर्ल्ड ओवर ये चल रहा है डिबेट कि फेसबुक ने एल्गोरिदम के तौर पे रोहिंग्यास वाला रॉयट बर्मा में, म्यांमार में, सिर्फ इसलिए कि रोहिंग्यास के एंटी अगर वो जाएगा तो एल्गोरिदम में वो बढ़ रहा था, तो एल्गोरिदमिक ढंग से वो रॉयट्स हो गए वहां पे।
1: जी,
0: तो ये सारी चिंता तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि सोशल मीडिया का ये जो आस्पेक्ट है ना, कि वो एल्गोरिदम से गाइडेड होता है, वो इथिक्स से गाइडेड नहीं होता है। अगर एल्गोरिदम से गाइडेड होगा तो वो इमोशनलेस होगा।
1: असर इस चीज को, इस वर्ड को अगर आप थोड़ा समझाना चाहें तो मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा जिस वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं है। एथिक्स की बात तो चलो हम समझ में आ गए, जो एल्गोरिदम का आप जिक्र कर रहे हैं।
0: जैसे मान लीजिए कोई चीज, हम फर्स्ट पोस्ट में काम करते थे तो हम लोग के पास ये होता था कि मेरी स्टोरी जो हमने लिखी है वो कितनी ज्यादा देखी गई, पढ़ी गई, उस पर लोगों ने टाइम स्पेंड कितना किया। उसमें कई कीवर्ड्स होते थे जो एल्गोरिदम से गाइडेड होते थे। तो उसको जब ट्वीट भी किया जाता था या वो किया जाता था, तो वो वर्ड्स जो कि लोग ज्यादा देखेंगे उसलिए उसको उसी ढंग से ट्वीट करते थे या उसको फेसबुक पे डालते थे। ये होता है एल्गोरिदम से गाइड होना। और फेसबुक या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उसी से गाइड होते हैं। उनको पता होता है कि वर्ल्ड ओवर क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं। तो लेकिन वो हमेशा इथिकल होगा, ये सही नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दोस्तों ये जो

सवाल था, यही जवाब सर से हम सुनना समझना चाह रहे थे और ये सवाल का जवाब आपके लिए था कि इस भाषा को, इस परिभाषा को आप आत्मसात करिए कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उस पर विश्वास मत करिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए क्या ये सही है या गलत है। और जब आप अच्छी न्यूज़, अच्छी बातें प्रेषित करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में लोग जागरूक भी होते हैं और जिससे वो लाभ भी उठा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर प्यार बांटते चलिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, एक शख्सियत हैं मीडिया जगत के, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और लगभग 4 दशक प्लस का अनुभव है सर के पास। आप हैं अजय सिंह सर। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
1: थैंक यू।
0: राष्ट्रपति जी का जिक्र आपके इस बायोडेटा में हो रहा है, प्रेस सचिव के रूप में आपने वहां काम किया, और एक नहीं ये आपकी खुशनसीबी है कि दो दो राष्ट्रपति के साथ आपने काम किया है, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ और अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मैम के साथ आपने काम किया। तो वो जर्नी कैसी रही, कैसे आप वहां पहुंचे और कैसा माहौल हुआ करता था, वो प्लीज आप बताएं सर।
1: राष्ट्रपति भवन तो बिल्कुल ही अलग असाइनमेंट था, क्योंकि हम तो फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे हैं
0: जी।
1: तो ये दरअसल अपॉइंटमेंट होता है जो ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो उनका उनसे होता है और राष्ट्रपति जी अप्रूव करते हैं। तो इस तरह से ये एक सरकारी अपॉइंटमेंट होता है, सरकारी अधिकारी के रूप में हमने वहाँ काम किया है और जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ काम करना अपने आप में एक
0: बड़ी बात,
1: हाँ एक हमारे लिए भी वो था, क्योंकि हम मीडिया में थे तो मीडिया में हम फेंस के दूसरे साइड थे, सरकार के साइड में हम नहीं थे। जब हम इस तरफ आए तो कई चीज़ें पता चली कि शायद वहाँ पे अगर हम होते तो जो चीज़ न्यूज़ बन जाती वो न्यूज़ नहीं थी, या हम जितना जानते हैं जिस पे हम न्यूज़ बनाते हैं उससे 10 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे समझ में आई और वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, कैसे हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, कैसे डेलीगेशन लेवल टॉक होते हैं, बैंक्वेट होते हैं, तो उसमें बातचीत क्या होती है, तो वो उसमें अच्छा। और दूसरा हमारा ये जो रोल था इसमें, जब भी प्रेसिडेंट का इंटरफेस किसी से भी होता था तो उसमें हमारा रोल आता था, प्रेस सेक्रेटरी का रोल होता है, यानी अगर वो स्पीच दे रही हैं या उनका ट्वीट जा रहा है या कहीं पे भी बात कर रही हैं तो उसमें इनवेरिएबली जो प्रेस सचिव होता है उसका रोल होता है, उन्हीं को देना होता है सब
0: ये।
1: तो हाँ, तो वो अच्छा एक अनुभव था। दूसरा हमारे पूर्व जो पूर्ववर्ती थे उसमें भी काफी इलस्ट्रियस लोग हैं, जयशंकर जी भी रहे हैं प्रेस सेक्रेटरी, तो इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग।
0: मैं और भी देख रहा था आपकी, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी आपने बहुत अपनी बातें रखी हैं, अगर अदरवाइज मैं देखूं कि बहुत लंबा लिखा जा सकता था आपके बारे में, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में बातें रखी हैं। तो मैं एक पक्ष पर ये जानना समझना चाहूँगा, इस वो ध्यान लेकर जाना चाहूँगा आपका, कि आप किताबों का जिक्र कर रहे हैं, जो किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में बताइए वो जर्नी कैसी रही, कौन कौन सी किताबें आपकी आई।
1: वो किताब एक ही किताब है मेरी जो पेंगविन ने छापी थी और वो है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर पे है और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से BJP को एक नए संगठन का ढांचा दिया और वो ढांचे में जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं पार्टी बिल्डिंग के, उस मेथड से वो कहाँ कहाँ अलग हुए और कैसे उन्होंने एक ऐसा BJP बनाया जो कि कांग्रेस जो 50s और 60s में जिस स्थिति में था, 50s में आज़ादी के जस्ट बाद, BJP आज उसी तरह की पोजीशन में है। और इलेक्शन हारना जीतना एक अलग बात है, आप हो सकता है कि इलेक्शन हार जाए या जीते जो भी होगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि BJP एक प्रिंसिपल पोल बन गया है, उसके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स होगी रिवॉल्व। कांग्रेस का जो 60-70 तक था, तो हमारा वही थीसिस था, उसी पे हमने रिसर्च किया था और करीब जो ये करीब 4 साल चला था रिसर्च, और करीब 100 ऐसे लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किए हों उनसे हमारी बात बात हुई थी, और
0: उस अनुभव के आधार पे आपने,
1: उस अनुभव पे और जो हमने खुद भी देखा, दरअसल 95 में जब हम आए थे तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे BJP में थे, दिल्ली में थे, सेक्रेटरी थे पार्टी के, तो उस समय से जो हम देखते थे उसके हिसाब से और कई लोगों से बात करके और उसके हिसाब से हमारा एक अपना आकलन था, वो हमने लिखी और उसका इंट्रोडक्शन लिखा। वॉल्टर एंडरसन एक हैं, वॉल्टर एंडरसन ने बीजेपी और आरएसएस पे काफ़ी काम किया है, ब्रदरहुड इन सैफरन उनकी किताब है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो ये जो जर्नी आपकी रही है बहुत अच्छी जर्नी रही है और जिस एक नई जर्नी में आप कदम रखने जा रहे हैं और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस यात्रा में हम सब आपके साथ हैं और इस यात्रा का हम लुत्फ उठाना चाहेंगे, आपकी संगत करना चाहेंगे, आपसे बारीकियों को हम सीखना समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शारदा यूनिवर्सिटी के SSMFE को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। साथ ही साथ मैं ये आखिर में ये समझना चाहूँगा, अगर आपकी तरफ से कोई एक कहते ना कि आने वाली जनरेशन को कोई एक मंत्र या यूँ कहें कि कोई दिशा निर्देश या फाइनली यूँ कहें कि कोई एक ऐसा गुरु मंत्र जिनको वो ध्यान रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
1: देखिए मैं कोई स्पिरिचुअल लीडर तो हूँ नहीं जो कि मैं मंत्र दूंगा, लेकिन हाँ नई जनरेशन से हमें भी काफ़ी कुछ सीखना होता है। तो और दूसरा इंटरेक्शन के साथ कई चीज़ें हमें मालूम चलेगी उनके बारे में, उनके एस्पिरेशन के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, और कई चीज़ें हमारी होंगी जो कि शायद उनको लगे कि इस लायक हैं कि उसको वो इम्बाइब करें।
0: बहुत खूबसूरत, इसके बारे में ज़रूर समझना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती। दिक्कतें परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, जिस राह पर आप चल रहे हैं हर्डल्स आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे, तो उन चुनौतियों से आगे बढ़ते हम कैसे मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं?
1: नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मुस्कुराने के सिवा। तो जैसा मैं हूँ वैसा हूँ।
0: क्या बात है। चलिए ये जो बातों का सिलसिला है, ये जो सफ़र रहा हमारा, यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने सुना जिनके बारे में उनकी यात्रा को हमने जाना, आत्मसात किया। और आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू कैसा लगा? 0120406025 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल जोल के माध्यम से मेल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं, आपका स्वागत है। तो वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, न टेंशन लेने की ज़रूरत, न किसी को टेंशन देने की ज़रूरत। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और अपने ख़ास मेहमान का भी हम दिल की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वैल्यूबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप थे हमारे साथ अजय सर, जो कि बहुत बड़े अनुभव के साथ आते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जो संपर्क सूत्र के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं ले रहा हूँ आपसे अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: राम राम, दोस्त लाभ, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:02 हो चुके हैं। 8 तारीख है, यानी कि बृहस्पतिवार, बोले तो थर्सडे का दिन। और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से हर रोज की तरह यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बस आपको सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ इनकी शुरुआत करते हैं। So don't go anywhere. Stay tuned. All you Surushata 90.8 FM with me, mere yani Gagan ke saath.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं। 8 तारीख है यानी कि थर्सडे का दिन, बृहस्पतिवार का दिन। और आज क्या खास अपडेट निकल कर हमारे सामने आ रही, तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज मौसम कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अपडेट्स निकल कर ये सामने आ रही है कि मानसून की विदाई वैसे देखा जाए तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन कई हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है। और अपडेट्स यहाँ तक की हैं कि कई राज्यों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। और पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। और वहीं मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो दिन के समय में थोड़ी सी गर्मी का एहसास हम लोग करते हैं, और लेकिन सुबह और रात के तापमान की अगर हम बात करें तो उस वक्त गिरावट नजर आती है, यानी कि हल्की हल्की ठंड का एहसास होने लगता है। तो इस तरीके से मौसम बदलता हुआ आ रहा है, मौसम बदलने वाला है, या यूं कहें कि टोटल अपडेट्स जो हैं वो हैं 8 अक्टूबर से लेकर आने वाले समय तक कुछ ऐसे ही रहने वाला, एक हफ्ते तक लगभग। और इसमें कई सारी अपडेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली NCR भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तो इस तरीके से मौसम बदलता है, मौसम बदलते वक्त आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमने आपको अपडेट्स नहीं किया। अपडेट करने के बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि लोग लापरवाही बरतते रहते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं और खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाफ बाजू के शर्ट्स पहन रहे हैं। और गर्मी जब जा रही है, अगर मौसम बदल रहा है तो फुल बाजू के आप कपड़े पहनना शुरू करिए, और ऐसे मौसम में मच्छर वगैरह वगैरह दिक्कत परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। तो दिल्ली NCR में मौसम बदल रहा है और अपने आप को तैयार रखिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है,

0: कंगना।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: सिर्फ गाने को एंजॉय किया, आज जिन वैलेंटाइन डे का नहीं है।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
0: ये क्या था, जैसे कि तुम्हें बताई नहीं छींक आ रही थी और क्या जा रही। चलिए हंसते मुस्कुराते छींक करते रहो, मतलब छींक करते रहो मतलब ये क्या है। खैर कहने का मतलब ये बहादुर का एक इशारा है कि सर्दी मौसम में, मौसम जब बदलता है तो ऐसी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, किसी को सर्दी खांसी जुकाम, किसी को छींक की शिकायतें, या किसी को मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है ग्रेटर नोएडा के आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM पर कि बदलते मौसम में सेहत का ख्याल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी कि इन्फेक्शन बोले तो संक्रमण से अपने आप को बचा कर रखिए। सर्दी जुकाम फ्लू और जो डाइजेशन के लिए ना कि पाचन जो संबंधी बीमारियों का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी को मजबूत कर रखना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाकर रखना होगा। तो कुछ चीजों को ध्यान रखना, जैसे कि खाने पीने में आप बदलाव करें, हल्का और ताजा भोजन आप खाएं और बाहर के खाने से आप परहेज करें। नहीं बेटा मैंने देखा है तुमने जब ब्लॉक बनाते हो ना, नहीं वो ब्लॉक होता है अच्छा गा लगाना है तो उसमें तुम समोसे की बात कर, नहीं नहीं कभी कभी यदा कदा चल जाएगा, लेकिन अगर आप रूटीन में फास्ट फूड या बाहर का खाना खा रहे हैं तो दिक्कतें परेशानियां आपके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और अगर आप खाने में पेट को ठीक रखने के लिए दही या छाछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आंतों के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बैक्टीरिया बहुत मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। और पानी की शुद्धता यानी कि हाइड्रेशन, उबला हुआ या फिल्टर पानी आप पी सकते हैं और पानी भरपूर पीजिएगा। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि बदलते मौसम में उनको लगता है कि पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही समय में डिहाइड्रेशन की समस्या उनके सामने हो सकती है। तो कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखेंगे तभी आप किसी काम को बखूबी तक अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: फीलिंग्स पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे

दूजी बार भी हुआ है प्यार तेरे नाल। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:31 हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये कि आप अपनी सेहत से प्यार करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि बदलते मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही मत बरतिएगा। और मुझे लगता है कि जब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो टाइम से सोना, टाइम से खाना, एक्सरसाइज करना और टेंशन फ्री रहना। कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। नहीं नहीं, गेम नहीं खेलना, अच्छा सिर्फ ज्ञान देना। खैर, बात यही है जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक्सरसाइज करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। फिलहाल जब आप ऑन रोड चल रहे हैं, शारदा विश्वविद्यालय या शारदा अस्पताल के सामने अगर आप हैं तो एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक अस्पताल है और अस्पताल के आसपास एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है। अक्सर हमने देखा कि सीएनजी पंप की वजह से यहाँ जाम की स्थिति बन जाती है और जाम की वजह से यूँ समझ लीजिए कि सब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समय से 5 से 10 मिनट पहले का एक मार्जिन लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। लेकिन अपनी लेन को फॉलो करेगा, जबरदस्ती ओवरटेक ना करेगा, और अपनी लेन से अब जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी वजह से सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्रैफिक की अपडेट क्या है दिल्ली एनसीआर की, उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक अपडेट भी मेरे सामने, तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच द्वारा आज नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 96 के बाहर थोड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा, जिसको हम कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन के चलते आसपास के रास्तों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। और इस सतर्कता की वजह से अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप यू टर्न ले लीजिएगा, यानी कि वैकल्पिक रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में क्या खास है उसके बारे में भी झटपट मैं आपको बताना चाहूंगा। द्वारका इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक इवेंट हो रहा है, तो उसके चलते वहां पर आसपास जो भरतल चौक है, धूल सिरस चौक है, वहां पर भारी वाहनों की आवाजाही पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया गया और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इस रास्ते से बचने की सलाह दी गई है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अगर आपके साथ इंकलाबी जिद्दी ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलियो सुरुशा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
2: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

वैसे देखा जाए तो जिंदगी को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। कहीं खुशियां हैं, कहीं गम हैं, और गाना भी वही कह रहा है कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, कहीं वो प्यार किसी और से करती है, कहीं वो जिस तरीके से बात हो रही है इस गाने में कि हम शरारते करते रह गए, वो कहीं किसी और के प्यार में पड़ गई, या हो सकता है कि वो किसी आप ही के साथ आपके साथ आगे बढ़ गई। और उसके बाद जब हम उसके बाद देखते हैं कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अखबारों के पन्ने को हम पलटते हैं तो देखते हैं कि वही घटनाएं हमारे सामने हैं। और जैसे आज मैंने एक सोशल मीडिया को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो देखा कि ऐसी एक घटना घटी है नोएडा में, अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है और उसके बाद उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, नाले में कूद कर अपनी जान दे दी। ऐसी घटनाएं आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और अगर आप किसी के साथ बैठकर भी जा रहे हैं तो भी शक के दायरे में आप आ रहे हैं, और फिर वहाँ गाली गलौज, एक माहौल ख़राब होता है। अगर आपका डाइवोर्स चल रहा है, केस फाइल है, उसके बाद भी फिर दिक्कतें क्रिएट शुरू कर रहे हैं कुछ लोग, और एक माहौल ख़राब करने की कोशिश होती है। और हम ये भी देखते हैं कि शादी होने के बाद भी दिक्कतें परेशानियां हैं, शादी आप कहीं और करना चाहते थे या करना चाहती थी तो आप पहले ही मना कर देते, उसके बाद घटनाएं दुर्घटनाएं हम देखते हैं। तो इस बात का कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि सुनो शारदा 90.8 FM एक अपील करता है कि आप खुश रहिए, दूसरों को भी जीने दीजिए। कहते हैं कि जियो और जीने दो, उसका अपना ही एक अलग आनंद है, अपना ही एक अलग मजा है। अगर आप किसी की जिंदगी में व्यवधान डालेंगे तो ये सच है कि ईश्वर खुदा आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी को भी परेशान किया है, किसी को आपने दिक्कतें दी हैं। सोचिए अगर बहुत बड़ी दिक्कतें आपने दी हैं तो पुलिस, कोर्ट, कचहरी, आपका समय बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद, आपका रुपया तक बर्बाद हो जाता है, आप कहीं के नहीं रहते, है ना। तो किसी को आप चोट ना पहुंचाएं, खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। और अगर आपका साथी आपसे दूर होना चाहता है, ठीक है, अगर कहीं और जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप कोई गलत कदम ना उठाइए, है ना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ। इश्क करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुँचाएं, है ना। चलिए कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। और जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो फ्रेशर पार्टी हो, इवेंट पार्टी हो, बैचलर पार्टी हो, या कोई भी शादी ब्याह हो या कुछ और, उसमें आप शिरकत कर पाते हैं, है ना। जब आपकी तबीयत सही नहीं होगी तो किसी काम को काम तक अंजाम तक पहुंचाने में मन ही नहीं लगेगा। फ्रेशर पार्टी का जब मैंने जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे, एक दौर शुरू हुआ एडमिशन का दौर खत्म हो चुका है और शारदा कैंपस में आज से लेकर कल तक फ्रेशर पार्टी का आयोजन देखने को मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है फ्रेशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर यहां पर आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शारदा यूनिवर्सिटी का जो पेज है, वेबसाइट है, उसको जब आप विजिट करेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। SSMFE भी है, यानी कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ एक छत के नीचे टीवी की बातें, रेडियो की बातें, फिल्म की बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शारदा इज हियर, शारदा यूनिवर्सिटी आपके लिए। तो इस इवेंट में जब आप आ रहे हैं, खासकर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो अपना आई कार्ड लेकर जरूर आएगा और सुरक्षा की दृष्टि से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको जरूर आपको ऑपरेट करेगा। ऐसी डीजे नाइट्स आपको देखने को मिलेगी। ब्यूटिफुल ट्रैक ऑल यू सुरक्षा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ। 9:51 8 तारीख 8 अक्टूबर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: उन्होंने कहा था कि मुझे मृत्यु पर विश्वास है, और सच बात तो है कि जिंदगी आती जाती रहती है, कभी किसी के आने से जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मालूम है कि 12 मन लकड़ी लगेगी जब मैं गुजरूंगा, और उन्हीं लकड़ियों में आप मुझे चिता दीजिएगा, अग्नि दीजिएगा, और मैं मर जाऊंगा तो तस्वीर मत लगाना, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं इसी तरह जीता हूं, मुझे लगता है कि यही सच्चाई है कि आप मर जाओगे, आपको कोई याद नहीं करेगा, 2-4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। हमने तो ये भी बोल दिया है कि मेरी तस्वीर भी तुम मत लगाना, पूरी तरह भूल जाओ मुझे। मेरे घर में 7 भाई बहन थे, 6 गुजर चुके हैं और मैं हूं, और जब मैं जाऊंगा तो अपनी मां से मिलूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और सच बात है कि जितने भी प्रशंसक हैं नाना पाटेकर के, आज उनको याद कर रहे हैं। नाना पाटेकर बहुत अच्छे अभिनेता, आज हमारे बीच नहीं रहे, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और सच बात है कि अपनी अच्छी फिल्मों से उन्होंने हम सबका मनोरंजन किया, एक संदेश देती थी उनकी फिल्में, और आज हम उन सबको बस याद कर रहे हैं। हम उनकी बातों में, स्मृतियों में कहीं ना कहीं अपने आप को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं। नाना पाटेकर बहुत अच्छे अभिनेता, अच्छे इंसान, आज हमारे बीच नहीं रहे। सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि। और मुझे लगता है कि आशाओं के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि आशाएं ही हैं जो जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहते हैं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ यही है कि हे ईश्वर पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोग आप रखें, आप हमें ऐसा आशीष दें, आप हमें ऐसा वर दें, ये ईश्वर से हमारी कामना है। लेकिन सच बात तो ये कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ईश्वर, खुदा, पिता परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और कहा भी जाता है कि निरोगी काया अगर आपकी है तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं। राम राम, दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं गगन आपके साथ। दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले हैं, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। वाकई एक गंभीर विषय है, अच्छा विषय है, और इसको जानना समझना बहुत जरूरी है और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, 10 से लेकर 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करेंगे हमारे चिर परिचित हमारे भैया अर्थात सेहतिया सिंह जी। तो सेहतिया सिंह जी, सुरो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद गगन जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसीलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और आज मुझे लगा आपसे बात करके हम अपने प्यारे मित्रों के साथ ये जानकारी साझा कर पाएंगे।
1: भाई सेहतिया सिंह जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि आप भी उम्र दराज हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में बच्चे हैं, हम समाज को देखते हैं। तो एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
2: भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, हम सभी के घरों में बच्चे हैं और वो उम्र के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिन्हें कई बार वो आपस में या अपने बड़ों से साझा नहीं कर पाते। दरअसल जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती हैं। शरीर बदलेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा ही, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
1: वाकई बहुत अच्छी बात आप एक अनुभव के साथ हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सेहतिया सिंह जी, एक अनुभव मैं भी साझा करना चाहूंगा इस बात पर आने से पहले जो हम स्क्रिप्ट के आधार पर पढ़ रहे हैं जी। मेरे एक मित्र थे साकिब साहब, उनके घर में कोई समस्या, मैं समझता हूँ, खुलकर बात कर लेता हूँ, उनकी कोई एक महिला मित्र थी, उनके सामने कोई समस्या आई, चूंकि हम डॉक्टर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दो बातें हो सकती थी सर वहां पर, या तो मुझे हंसना चाहिए था या मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसने बिना बेझिझक मुझसे बातें की, तो वही समझदारी दिखाते हुए मैंने भी वही बात डॉक्टर साहब से जानकर पूछकर उस समस्या का हल उन तक पहुंचा दिया। आशय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें भी इसी प्रकार की समझदारी दिखाने की बहुत जरूरत है, और शायद ये जो कहानी है, ये जो स्क्रिप्ट है, आगे हमें यही बताएगी। लेकिन भैया, अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
2: भाई देखो, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये अगर महिलाओं से संबंधित है तो इसके बारे में जानकारी केवल महिलाओं को ही हो, पुरुषों को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरना कई प्रकार की भ्रांतियां मन में पल जाती हैं और उन्हें लेकर समाज में किसी तरह की कुंठा बन जाती है। ऐसा हमें समाज में नहीं होने देना चाहिए। अब बात आती है गर्भ ठहरने की, यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बनना कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का पूरा हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का भी पूरा अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
1: वाकई सेहतिया सिंह जी, आपने बहुत सच्ची अच्छी बात हमारे श्रोताओं तक आम भाषा में समझा दी। दोस्तों, इस बात को जानिए, समझिए, और जो आपके करीब है, जो करीबी है, उसे जरूर शेयर करिए। समस्या अगर कुछ है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी किशोर को डर लगे या शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो सेहतिया भैया उस वक्त उसे क्या करना चाहिए?
2: सवाल उठाना ही सबसे अच्छी बात है। ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
1: वाकई बहुत सच्ची अच्छी बात आपने फिर से दोबारा हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दी। सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ हमेशा रहता है। तो ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
2: बिल्कुल गगन जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई, लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, वो भी उचित समय पर, और ये उन्हें अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी भी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ भी देना है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी बात सुननी है, समझनी है, और जो आपने कहा आखिर में कि उनको डांटना नहीं है। डांटने का मतलब सेहतिया भैया, मुझे लगता है कि बात का विरोध करना या बात को वहीं रोक देना है। लेकिन जब आप बात को सुनेंगे तो वो अपनी समस्या आपके सामने लेकर आएगा और मैं समझता हूँ कि वक्त रहते हुए उसका समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते। जी जी, कुछ कह रहे थे।
2: दरअसल हम कई बार बच्चों को डांट इसलिए देते हैं कि या तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है या फिर हम उनसे इस विषय पर बात करने में झिझकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जबकि ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई किशोर अपने बड़ों से इस विषय पर बात करना चाहता है तब वह ये समझता है कि ये सबसे मेरे निकट हैं, इसलिए मुझे अपने मन की बात इनसे कह देनी चाहिए। वहीं इस समय पर अगर उन्हें डांट दिया जाए तो वे किसके पास जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आप कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि एक अनुभव वाले व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया जो अपने अनुभव के साथ हमारे साथ ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। सियातिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाएं तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
2: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक केस सभी ने सुना होगा, इस विषय से संबंधित ही वह समस्या थी। खैर, आज के विषय पर बात करते हैं। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे दोनों पर खतरा आ सकता है, फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट कर रह जाती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से, समाज की वजह से चोरी छुपे गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है? क्योंकि मैं बहुत डर के ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और जबकि मैं समझना भी चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स भी समझना चाहते हैं कि ऐसे में सही कदम क्या होगा।
2: दरअसल जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बह जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से उसे बिल्कुल बचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आखिर की जो लाइन है उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, अर्थात दोहराना चाहूंगा, सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है जो हमारे सेहतिया भैया आपको बता रहे हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सेहतिया भैया कि अब एक दूसरी समस्या पर हम बात करना चाहेंगे। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
2: दरअसल किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं
1: जी।
2: अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुल

0: कर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि कहते ना कि घर प्राथमिक पाठशाला होती है, और यहाँ आप अपने माता पिता से यानी कि पेरेंट्स से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात सियातिया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संगत का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सियातिया जी, हम समझना चाहते हैं कि हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की हैं, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सवाल यही है कि क्यों बढ़ रही हैं?
0: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता ही है, और ऊपर से समाज की उम्मीद कि तू लड़का है रो नहीं सकता, या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है, तो क्या होगा? ये कुछ वैसा ही होगा जो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक केस में हुआ, जहां पर लड़की ने घर वालों से अपने गर्भावस्था को छुपाए रखा और लंबे समय तक नहीं बताया। नतीजा, जब ये बात खुलकर सामने आ गई तब उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आगरा ले जाकर उस बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। सोचिए, एक बाप जिसने उस बच्ची को पैदा किया, बड़ा किया, अपने हाथों से उसकी जान ले लेता है, कितना गलत है। लेकिन इस सिचुएशन सोचिए बनी क्यों, क्योंकि यदि उस पिता ने उस बच्ची की बात शुरुआत में सुनी होती, या उसे मौका दिया होता बात करने का, या माहौल घर में इतना खुला रखा होता, तो ऐसी मुसीबत घर में आती ही नहीं, या समय रहते इस बात को समझ लिया गया होता, और बच्ची का अगर गर्भपात कराने की आवश्यकता होती तो समय रहते इस पर कोई उचित निर्णय ले लिया गया होता। मगर क्योंकि हम परिवार में बच्चों को इतना बोलने की छूट ही नहीं देते, जिसके चलते वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसी के चलते कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, इससे उन्हें डर लगता है। उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहें, ऐसी बातें मत करें, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है और बड़ी मुसीबतों से बचा जा सकता है।
1: भाई, आपने बहुत विस्तार से एक उदाहरण के साथ आपने एक बात रख दी, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और आपने जो जिंदगी में देखा है, जो आस पड़ोस में देखा है, वो बात आपने सामने रख दी। तो मुझे लगता है कि सही कहा कि अगर वक्त रहते हुए समस्या का समाधान ढूंढना है तो समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, किशोरों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सकें? जी सियातिया सिंह जी।
0: हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं, और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है, इसे लेकर शर्माने की जरूरत कतई नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि रिश्ते मजबूती से हम लोग आगे निभा सकें। जो संबंध है पिता पुत्र का, माँ पुत्री का, या एक परिवार का एक दूसरे के साथ जो संबंध बना हुआ है, वो समझदारी से ही निभाया जा सकता है। दोस्तों, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए? सियातिया सिंह जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: बिल्कुल, एकदम दी ही जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है और वे किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाएं, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो, तो उसकी पढ़ाई करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है, या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा। ये जो वार्तालाप है बहुत सही दिशा में जा रहा है दोस्तों। अब बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया या बताया गया तो वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता सिखाना नहीं होता, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधी अधूरी जानकारी ज्यादा नुकसानदायक होती है। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया भैया जी। आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है, इसके बारे में भी बताइए।
0: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाया कैसे जाए, इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है।
1: इसके बारे में उचित जानकारी दी जाती है, तो इसको जरूर आप सुने, जाने, समझें, और जब आप जानेंगे समझेंगे मुझे लगता है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है। यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे, अर्थात मदद लेना चाहे, तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं।
0: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक। ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहाँ किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम। इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना। इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों की सेहत की बातें कर सके।
1: यानी कि गाइडेंस, मार्गदर्शन, ट्रेनिंग बहुत बहुत बहुत जरूरी है। और यही बात आप हमारे सेहतिया भैया से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा होता है सेहतिया सिंह जी, तो वो क्या होता है, क्यों होता है, अगर आप थोड़ा से विस्तार से बता सके।
0: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सीखती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है, ताकि गाँव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरियों के लिए ही नहीं, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
1: यानी कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और इसको जान लीजिए, समझ लीजिए कि हम क्या करें क्या ना करें। भैया, अगर RKSK जैसा प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाया जाए, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप?
0: आप सही कह रहे हैं। देखिए भैया, एक और बढ़िया योजना है अर्श। इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं, इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
1: भाई, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। इसके बारे में और अगर हम कुछ बात कर सकें या कुछ और आप हमें आगे बता सकें तो प्लीज बताइए।
0: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको बता देता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है या प्रक्रिया है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी हैं। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बात करती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
1: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खासकर सेहत को लेकर तो खुलकर बात करनी ही चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे होते हैं।
0: लड़कियों की सेहत और पीरियड से रिलेटेड एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एक बहुत ही अच्छी फिल्म है दोस्तों, नाम है पैडमैन। अगर हो सके तो कभी उसे देखिएगा, आपको समझ आएगा कि ये कितनी अच्छी जानकारी इस फिल्म के माध्यम से आम जनता के बीच में प्रसारित की गई है। खैर, आज की बात करें तो सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई तो वहां मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई, पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
1: बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समय पर इलाज मिलना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि एनीमिया, अगर शरीर में आपके खून की कमी है तो उसको एनीमिया कहा जाता है, और खून बढ़ाने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये कि ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं। ये मेरा सवाल है सियातिया भैया जी आपसे, तो मैं समझना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, तो सुनिए। सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही, पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेंगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर आपकी सोच अच्छी है, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जो कुछ आप सीखेंगे और समाज में आप देंगे तो वो एक दूसरे की मदद से कहीं ना कहीं हम आगे अपने देश में योगदान दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया आपने, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम एक शपथ लेते हैं और शपथ से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि इस जानकारी का लाभ उठाएगा, जैसा जैसा कहा गया है इस पर गौर फरमाएगा, डिस्कस करेगा यानी कि चर्चा करेगा अपने एक्सपर्ट के साथ जो इस जानकारी को, जिनको मालूमात है। डरेगा मत, घबराएगा मत। तो सेहतिया जी एक शपथ लेते हैं, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे

0: और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। जी हाँ, आरजे के रूप में मैं गगन आपके साथ जुड़ा रहा और सेहतिया के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे
0: शरद शर्मा।
1: तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। जब भी मन करे तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विषय वाकई बहुत अच्छा था, गंभीर था और अच्छी तरीके से हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराए। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
3: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
2: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
3: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
3: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
2: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और हर क्षेत्र में आज तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनका लाभ हमारे अन्य किसान भाई भी ले रहे हैं। तो आप अगर खेती से मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको तकनीकों का सहारा लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी फायदा आपको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खेती में लागत कम नहीं करेंगे तो जो एक मुनाफा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपकी जो खेती है उसमें लागत कम लगे और आपको फायदा ज्यादा हो। तो आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी घर में कृषि कार्यों में बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना इसका कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि हमें हर वक्त बिजली मिल सके और हमारी कोई भी फसल बिना पानी के सूख ना जाए। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसके तहत आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा दी जाएगी और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसान भाइयों, ये तो आपको पता ही है कि हम घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली से अपनी मोटर पंप चला रहे हैं सिंचाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, तो उनसे ही बचने के लिए सरकार ने ये योजना चला रखी है। अब इस योजना का फायदा कैसे लिया जाए ये भी आप सोच रहे होंगे। तो एक तो आपके पास आपका मकान होना चाहिए और एक बिजली का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और सोलर पैनल लगाने के लिए छत पर जगह भी होना चाहिए। तो किसान बहन भाइयों, आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते होंगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पंजीकरण और इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। एक वेबसाइट है सरकार की, उस पर आपको लॉगिन करना है और वेबसाइट की बात करें तो वो है registration.pmsuryaghar.gov.in। और जब आपकी पात्रता सत्यापित हो जाती है इस योजना के लिए तो सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं और सब्सिडी 3 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। तो किसान मित्रों, आप ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बिजली के बिल में कमी लाएं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में और आइए अब आपको सुनवाते हैं विधि देशवाल और रामधन गोस्वामी से ये उपदेश।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे विधि देशवाल और रामधन गोस्वामी। और अब बात करते हैं कि जो सौर ऊर्जा है उसका हम अपने कृषि में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा की मदद से चलाए जा सकते हैं, जिनका के लाभ हम अपनी खेती में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, कृषि में सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों का उपयोग खेती को सस्ता और आसान बनाता है। और अगर हम उपकरणों की बात करें तो उसमें आपका आता है सोलर वाटर पंप, सोलर ड्रायर, और साथ ही

ये सोलर फ्रिज का भी आजकल हमारे किसान मित्र खूब इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक अपना जो कृषि उत्पाद है उसको रख सकें, और जब बाजार में उन उत्पादों का दाम अच्छा हो जाए तो उनको बेच सकें। बात अगर हम सोलर पंप की करें, तो सूर्य की रोशनी से कुएं या नहर से पानी आप निकाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं, और इसमें बिजली और डीजल का खर्चा बिल्कुल नहीं होता, तो आपका फायदा होता है, और दिन में धूप के समय आसानी से सिंचाई आप कर सकते हैं। और बात करें हम सोलर ड्रायर की, तो आप अनाज, फल और सब्जियों से नमी को आप सुखा सकते हैं इसके माध्यम से, और ये भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं। इससे उत्पाद लंबे समय तक आपके सुरक्षित रहते हैं। और आजकल तो किसान मित्रों सौर ऊर्जा के माध्यम से जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो भी चलते हैं, और जिनसे कि आपकी जो फसलें हैं, आपकी जो फसल उत्पाद हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो आधुनिक तकनीक है खेती करने की, और ग्रीन हाउस में सर्दियों में पौधों को उचित तापमान देने के लिए भी आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कीटनाशक छिड़काव यंत्र हैं उनको भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं। और इसके साथ ही किसान मित्रों आपको बता दें कि सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है, और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आप किसान भाइयों की मदद कर रही है, और इसके लिए एक खास योजना भी सरकार चला रही है जिसका नाम है कुसुम सोलर योजना। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि आप किसानों को सोलर पंप लगाकर आपके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत आप किसान भाइयों को सस्ते दामों में सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है। और सबसे खास बात आपको इस योजना की हम बताएं तो वो ये है कि इस योजना के तहत आप किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी कुसुम योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं और अपनी खेती को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जा कर के संपर्क कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन, और आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो समय है, हम बात भी कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी का समय है, इंटरनेट का समय है और आजकल तो हर क्षेत्र में मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, तो हमारा कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो आप किसान भाइयों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके, सरकार की योजनाओं का पता चल सके और कृषि से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सके, इसके लिए सरकार ने किसान सुविधा ऐप बना रखा है जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं का लाभ और कृषि सलाह जैसी 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि इस ऐप पर आप किसान भाइयों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात आती है कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन होना जरूरी है, तो आप इसे अपने स्मार्टफोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाइए, सर्च बार में किसान सुविधा टाइप कीजिए और फिर कृषि मंत्रालय के लोगो वाले ऐप को पहचान कर इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने फोन के माध्यम से किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और ये जो जानकारी है जरूर आपके काम आएगी। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और हर क्षेत्र में आज तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनका लाभ हमारे अन्य किसान भाई भी ले रहे हैं। तो आप अगर खेती से मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको तकनीकों का सहारा लेना ही पड़ेगा और साथ ही साथ जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी फायदा आपको लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खेती में लागत कम नहीं करेंगे तो जो एक मुनाफा होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपकी जो खेती है उसमें लागत कम लगे और आपको फायदा ज्यादा हो। तो आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी घर में कृषि कार्यों में बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना इसका कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि हमें हर वक्त बिजली मिल सके और हमारी कोई भी फसल बिना पानी के सूख ना जाए। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसके तहत आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा दी जाएगी और उन्हें हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसान भाइयों, ये तो आपको पता ही है कि हम घर में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजली से अपनी मोटर पंप चला रहे हैं सिंचाई के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है, तो उनसे ही बचने के लिए सरकार ने ये योजना चला रखी है। अब इस योजना का फायदा कैसे लिया जाए ये भी आप सोच रहे होंगे। तो एक तो आपके पास आपका मकान होना चाहिए और एक बिजली का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और सोलर पैनल लगाने के लिए छत पर जगह भी होना चाहिए। तो किसान बहन भाइयों, आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते होंगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा पंजीकरण, और इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। एक वेबसाइट है सरकार की, उस पर आपको लॉगिन करना है और वेबसाइट की बात करें तो वो है registration.pmsuryaghar.gov.in। और जब आपकी पात्रता सत्यापित हो जाती है इस योजना के लिए तो सरकार द्वारा पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं और सब्सिडी 3 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। तो किसान मित्रों, आप जरूर इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बिजली के बिल में कमी लाएं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं विधि देशवाल और रामधन गोस्वामी से ये उपदेश।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे विधि देशवाल और रामधन गोस्वामी। और अब बात करते हैं कि जो सौर ऊर्जा है उसका हम अपने कृषि में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा की मदद से चलाए जा सकते हैं, जिनका के लाभ हम अपनी खेती में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, कृषि में सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों का उपयोग खेती को सस्ता और आसान बनाता है। और अगर हम उपकरणों की बात करें तो उसमें आपका आता है सोलर वाटर पंप, सोलर ड्रायर, और साथ ही सोलर फ्रिज का भी आजकल हमारे किसान मित्र खूब इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक अपना जो कृषि उत्पाद है उसको रख सकें, और जब बाजार में उन उत्पादों का दाम अच्छा हो जाए तो उनको बेच सकें। बात अगर हम सोलर पंप की करें तो सूर्य की रोशनी से कुएं या नहर से पानी आप निकाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं, और इसमें बिजली और डीजल का खर्चा बिल्कुल नहीं होता, तो आपका फायदा होता है। और दिन में धूप के समय आसानी से सिंचाई आप कर सकते हैं। और बात करें हम सोलर ड्रायर की, तो आप अनाज, फल और सब्जियों से नमी को आप सुखा सकते हैं इसके माध्यम से, और ये भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं। इससे उत्पाद लंबे समय तक आपके सुरक्षित रहते हैं। और आजकल तो किसान मित्रों, सौर ऊर्जा के माध्यम से जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो भी चलते हैं, और जिनसे कि आपकी जो फसलें हैं, आपकी जो फसल उत्पाद हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो आधुनिक तकनीक है खेती करने की। और ग्रीन हाउस में सर्दियों में पौधों को उचित तापमान देने के लिए भी आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कीटनाशक छिड़काव यंत्र हैं उनको भी आप सौर ऊर्जा के माध्यम से चला सकते हैं। और इसके साथ ही किसान मित्रों, आपको बता दें कि सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है, और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आप किसान भाइयों की मदद कर रही है, और इसके लिए एक खास योजना भी सरकार चला रही है जिसका नाम है कुसुम सोलर योजना। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि आप किसानों को सोलर पंप लगाकर आपके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाया जाए। इस योजना के अंतर्गत आप किसान भाइयों को सस्ते दामों में सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है। और सबसे खास बात आपको इस योजना की हम बताएं तो वो ये है कि इस योजना के तहत आप किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी कुसुम योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं और अपनी खेती को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन, और आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो समय है, हम बात भी कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी का समय है, इंटरनेट का समय है और आजकल तो हर क्षेत्र में मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, तो हमारा कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो आप किसान भाइयों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके, सरकार की योजनाओं का पता चल सके और कृषि से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सके, इसके लिए सरकार ने किसान सुविधा ऐप बना रखा है जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं का लाभ और कृषि सलाह जैसी 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि इस ऐप पर आप किसान भाइयों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात आती है कि आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन होना जरूरी है, तो आप इसे अपने स्मार्टफोन पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में जाइए, सर्च बार में किसान सुविधा टाइप कीजिए और फिर कृषि मंत्रालय के लोगो वाले ऐप को पहचान कर इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने फोन के माध्यम से किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और ये जो जानकारी है जरूर आपके काम आएगी। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

प्रियंका चौधरी द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

मठ में पड़ी हुई थी। वो छलिया विश्वामित्र जिसने राज को लिया था और जिसने हरिश्चंद्र को भंगी के घर बिकवाया था और तारा रोहतास को रामलाल पंडित के यहाँ केवल 60 भार सोने के बदले, दोस्तों उसी ने रोहित को शराब बन के डस लिया और उसी ने आज तारा के मुंह पर खून लगा दिया और उसके आगे खेत कलर का आधा शरीर कच्चा होया और आधे से रक्त बह रहा था। आज तारा को डायन बना दिया और उधर काले को आदेश दे दिया वहां के राजा ने काशी, काले इस डायन को मरवा दो, ये मानस खानी है। मेहरबानो आज हरिश्चंद के हाथ में खूनी तलवार

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं, शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है, नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।

बैरमपुर बस्ती में धर्म सिंह के यहाँ पहुंच गए, जिनके लड़के का नाम नीरज था। और किस तरह से कहने लगे, हम लड़के की तलाश में आए हैं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
2: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। श्रोता, शादी के खूबसूरत बंधन में बंधते समय एक लड़की हजारों सपने देखती है और उन सपनों को संजोते हुए अपने घर की दहलीज लांघकर दूसरे घर जाती है जहां वे उम्मीद करती है कि प्यार और विश्वास की डोर से वो सबको अपना बना लेगी। लेकिन जब अपने रिश्ते ही कांटा बनकर चुभने लगे तब एक औरत कहां जाए। तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही कहानी की ओर और जानते हैं कि स्नेहा कौन है और आज उसके घर पर इतनी चहल पहल क्यों है।

0: बारात आने वाली है।
1: माँ वो सब छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ।
0: बहुत सुंदर। अच्छा ये बता तेरे पापा कहाँ हैं? अभी तक तैयार हुए या फिर नहीं? अरे बारात आने वाली है और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं।

0: नहीं मत मारिए, मत मारिए, आह नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मुझसे हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी, छोड़ दीजिए मुझे।
1: अरे श्याम बेटा, और फिर करमजली ने क्या करके रख दिया?
2: अरे माँ, इसका वही रोज रोज का स्यापा, वही रोज रोज का तमाशा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ इसे कि मुझे सुबह 8 बजे चाय दे दिया कर, मुझे सुबह 8 बजे चाय मिल जानी चाहिए, लेकिन इसको है कि समझ आता ही नहीं, मुझे चाय ही नहीं, मुझे चाय नहीं मिलती 8 बजे, और अब मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। सुबह सुबह सारा मूड खराब करके रख दिया माँ इसने मेरा।
1: कोई बात नहीं बेटा, तू ऑफिस जा, इसको मैं देखती हूँ। अरे करमजली, तुझे कब अकल आएगी, जिंदगी हराम करके रख दिया हम लोगों की। क्या सोचा था कि एक पैसे वाली बहू लेकर आएंगे, और घर में आ गई तू।
0: माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है?
1: जुबान लड़ाती है मुझसे।
3: बेटी कैसी है तू?
0: माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सास और पति मुझे रोज रोज बहुत पीटते हैं, मैं तंग आ गई हूँ और अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से।
3: अरे सनेहा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इस तरह नहीं करते, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब हर बात पर तुम मायके उठ कर आ जाएगी, ऐसा नहीं करते हैं बेटा।
0: माँ यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे।
3: सनेहा पहले तुम मेरी बात सुन, तू दामाद जी की सारी बातें माना कर और उनसे बहस बिल्कुल मत किया कर, समझी? बाकी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं फोन रखती हूँ, तू अपना पूरा ध्यान रखना।
2: स्नेहा, स्नेहा
0: जी आई।
2: कब से आवाज लगा रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी खाना लेकर आ मेरे लिए, भूख लगी है मुझे बहुत ज्यादा।
0: अभी लाती हूँ, ये लीजिए।
2: ये क्या बनाया है तूने, इसे तू खाना कहती है? जहर है ये, जहर, जहर लाती है मेरे लिए, हैं? बेवकूफ बनाती है बार बार मुझे, कितनी बार समझाऊं तुझे।
0: बचाओ, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो।
2: छोड़ूंगा तुझे,
0: छोड़ दो मुझे।
2: अरे जा दफा हो यहाँ से।

0: शादी का बंधन बड़ा ही खूबसूरत सच है, लेकिन ये सच किसी की जिंदगी का खौफ भी बन जाता है। हम लोग समाज को लेकर तो बड़े सजग रहते हैं कि ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या वैसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि इसके नीचे एक औरत का जीवन, उसके सपने और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब जागरूक हों और जब भी किसी महिला के साथ हिंसा होते देखें तो जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो। यदि इस कार्यक्रम से जुड़े आपके भी कोई विचार या कोई सवाल है तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7018712909। आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 FM। नमस्कार।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
6: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
5: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: शिपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
2: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। यह है ग्रेटर नोएडा का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं हम आपके लिए। कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत है और ये कार्यक्रम अक्षर पर आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का शीर्षक है क का की कहानी। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए बच्चे अगर इस कार्यक्रम को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से चीजों को वो समझ पाएंगे। अगर ऐसा ही माहौल उनको घर में मिले तो ये भी सच है कि वो हंसते खेलते कब चीजों को याद करने लगेंगे शायद हमें और आपको पता ही ना चले। चलिए, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराता, आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है अक्षर पर आधारित कार्यक्रम। आज का अक्षर है क, तो आइए सुनते हैं क क की कहानी।
4: तो दोस्तों, आज हम काका की कहानी सुनेंगे।
5: काका कौन है, बता तो सही।
4: अरे अरे, काका नहीं, क क क क की कहानी। समझे?
5: क्या करे, समझ नहीं आ रहा,
6: ठीक से बताओ ना।
4: हाँ हाँ, तो सुनो। एक थी छोटी सी प्यारी सी लड़की, नाम था कमला। क से कमला।
5: क से कमला।
4: हाँ, क से कमला।
6: आप तो काका की कहानी सुनाने वाले थे, आप तो कमला की कहानी सुना रहे हो।
5: आप फुटू ना रहे हो।
4: अरे नहीं नहीं गुड़िया, सुनो तो सही। तो हुआ क्या, कमला के पास एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था। क से कुत्ता। एकदम काला कुत्ता।
7: काला कुत्ता वो काटता नहीं था।
6: मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है।
5: हमको भी डर लगता है।
4: अरे नहीं नहीं बच्चों, वो कुत्ता काटता नहीं था। समझ गए?
6: कुत्ता कमला को काटता नहीं था।
4: हाँ, वो कुत्ता काटता नहीं था। कमला कुत्ते को कालू कहती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। हाँ तो बताओ, कमला कुत्ते को क्या कहती थी, क्या कहती थी?
6: कालू।
5: कालू। अच्छा, कमला और साथ साथ खेलते थे।
4: हाँ, कमला और कालू साथ साथ खेलते थे। पता कैसे खेलते थे? कमला कालू से कहती, कालू आजा आजा आजा आजा, और कुत्ता भौंकता ऐसे। अब मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं पकड़ पाए ना, हार गए ना, हार गए ना। तो बच्चों, वो लोग ऐसे खेलते थे।
6: कितना मजा आता होगा ना दोनों को।
4: हाँ बिल्कुल, और कालू कमला के घर की देखभाल भी करता। अगर कोई जान पहचान का ना होता तो भौंक भौंक कर शोर मचा देता। कैसे शोर मचाता?
6: भाव भाव भाव भाव।
4: शाबाश। तो भाई, बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था कालू, बहुत ही प्यारा। और हाँ, एक

0: बताता हूं भाई, तुम सुनो तो सही। कुंदन ने सोचा क्यों ना कालू को ही चुरा ले। कालू नहीं होगा तो वो रात को चुपचाप चोरी कर लेगा।
1: कुंदन ने कालू को चुरा लिया।
2: कालू को चुरा दिया।
0: अरे रुको रुको भाई, पहले मुझे ये बताओ कि क से कमला के पास क्या था।
1: क से कुत्ता।
0: शाबाश। और क से कुत्ते का नाम क्या था?
3: कालू।
0: बिल्कुल सही कहा राहुल ने, क से कालू। अब तुम्हारी समझ में आया कि क से कुत्ता और क से कालू। और बताओ क से चोर का क्या नाम था?
2: क से चोर का नाम क्या था?
0: कुंदन। तो भाई कुंदन कालू को चुराना चाहता था, समझ गए? चोर ने सोचा मैं कालू के मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा, कालू भौंक नहीं पाएगा, फिर मैं उसे चुरा कर ले जाऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। कहाँ है कालू, कहाँ है कालू? मैं कपड़ा इसके मुंह पर बांध देता हूँ। हाँ ए ए तो बच्चों क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ बताओ?
2: कुंदन ने कालू को चिल्ला दिया।
0: अरे नहीं, बल्कि कालू ने कुंदन को काट खाया। कैसे काटा बोलो, कैसे काटा? हाँ तो बच्चों ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ होगा, बताओ सोचो।
1: चोर ने कालू को पकड़ लिया।
0: नहीं बिल्कुल गलत, बल्कि कुंदन ने खुद ही शोर मचा मचा कर लोगों को जगा दिया। तो दोस्तों हाँ, तो इस तरह से सब लोगों ने चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे? पकड़ो कालू को चुराएगा। और फिर आखिर में चोर जेल चला गया। तो बच्चों कैसी लगी कहानी बताओ?
1: अच्छी
0: लगी।
1: हाँ
0: जिसको अच्छी लगी वो बजाएगा ताली, बजाओ।

क की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन।

0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
1: अभी आपने सुना CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अक्षर पर आधारित कार्यक्रम। ये था कक्का की कहानी। तो बच्चा पार्टी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। और हाँ, इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो फेसबुक पेज है, जिसको हम सब चलाना जानते हैं ना, तो वहां पर भी आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी आपका मन करे कि शारदा विश्वविद्यालय आना है, रेडियो स्टेशन आना है, तो आप यहाँ आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी बात हम तक पहुँचाएगा जरूर। बस क्या करना है, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार और इस नमस्कार के साथ ढेर सारा प्यार, लाड़ और दुलार। आपकी मम्मी भी आपको खूब लाड़ लड़ाती होंगी, खूब प्यार करती होंगी। पापा भी आपको खूब प्यार करते होंगे और दादी और दादा की तो बस कुछ पूछो ही मत। आप शरारतें करते भी होंगे तो दादा दादी आपकी शरारतों पर पर्दा डाल देते होंगे कि नहीं, ये तो मोनू ने किया ही नहीं। अरे नहीं भाई, झुमकी कहाँ ये शरारतें कर सकती है, बेचारी इतनी सीधी सादी सी तो है। मुझे मालूम है कि आप सभी बच्चे खूब शरारतें करते हैं। शरारतें करना अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। शाबाश। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको, जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। अब आप सोचिए कि इस कहानी में क्या होगा। एक संकेत तो मैंने आपको कार्यक्रम के शुरू में ही दे दिया, यानी शरारत। इसमें कोई है जो खूब शरारत करता है और इसमें कोई है जिसके साथ शरारत की जाती है, लेकिन कौन? क्या चांद करता है शरारते, या फिर चांद वाली अम्मा शरारत करती है? आप कहेंगे अम्मा और शरारते? बाबा रे, ऐसी बात तो उषा दीदी ही कह सकती हैं, हम नहीं कह सकते। अम्मा को कहें कि वो शरारत करती हैं तो अम्मा तो हमारी खूब कुटाई कर दे। तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि अम्मा भी शरारत नहीं करती, लेकिन बच्चों ये तो हो सकता है कि अम्मा के साथ कोई शरारत करता हो। हाँ, ये हो सकता है। तो आइए हम सुनते हैं कहानी जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, तुम वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा को फिर शरारत सूझी, उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी, मजा आया? आपको लगा होगा कि चांद वाली अम्मा भला है कौन, और अम्मा के साथ कोई शरारत कर दे ऐसी हिम्मत किस में है? और फिर अम्मा ने आसमान को कुछ नहीं कहा, वह आसमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, और अम्मा जब चांद पे चली गई तो वहीं रह गई। आप बच्चे अक्सर रात को आसमान में चांद देखते होंगे। चांद लगातार बढ़ता है और फिर घटता है। आसमान में चांद तो दिखता है, लेकिन साथ में और कौन नजर आता है? सूरज? नहीं भाई, रात को सूरज का क्या काम, रात को चांद होता है। और चांद के साथ कौन होते हैं? चांद के साथ होते हैं बहुत छोटे छोटे तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, और उनका टिमटिमाना ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब आसमान में जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं। तो इतना खूबसूरत नजारा होता है आसमान में रात को। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि चांद में दाग है, यानी कि चांद झक सफेद नहीं है, उसमें कुछ काला कालापन दिखाई देता है। तो अब जैसे बच्चे वैसे उनकी नजर। कुछ बच्चों को तो चांद में हाथी घोड़े नजर आते हैं, तो कुछ बच्चों को उसमें मोर नजर आता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ी अम्मा है जो अपना झाड़ू पकड़े बैठी है। तो ये कहानी आप सब बच्चों को बहुत पसंद आई होगी, लेकिन उषा दीदी के कुछ सवाल हैं। कहानी तो आपने सुन ली, अब कहानी के बाद ये बताना तो जरूरी हो जाएगा कि अगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। अब सब बच्चे हैरान परेशान से हो रहे होंगे कि भाई या तो आप कहानी सुना लीजिए या हमसे सवाल पूछ लीजिए। लेकिन उषा दीदी आपको कहानी भी सुनाएंगी और आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगी। सवाल भी तो मजेदार है, ठीक वैसे ही जैसे कहानी मजेदार है। तो मेरा सवाल यही था कि मान लीजिए कि अगर आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी होती तो क्या होता। तो यही होता कि अम्मा झाड़ू पकड़े पकड़े आसमान के साथ उड़ती रहती, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, और बेचारी झाड़ू पकड़े पकड़े थक जाती। और हो सकता था कि थकान की वजह से उनके हाथ से झाड़ू छूट जाता और वो धम से जमीन पर आ गिरती। लेकिन आसमान को बूढ़ी अम्मा का यूं जमीन पर गिरना भी तो पसंद नहीं था, तो आसमान बादल की मदद लेता। बादल से कहता कि जैसे ही बूढ़ी अम्मा नीचे गिरने लगे, तुम बूढ़ी अम्मा के नीचे चले जाना और उन्हें कालीन जैसा कोमल बिस्तर दे देना। तो अम्मा अगर गलती से भी झाड़ू छोड़ देती और नीचे धम्म से गिरती तो बादल उन्हें पकड़ लेता, बादल अम्मा को गिरने नहीं देता। अब ये बात तो थी आसमान की, यानी कि आसमान को शरारत करना बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे आप बच्चे तरह तरह की शरारतें करते हैं, दूसरों को डराते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। और आपको दूसरों को यूं डराना परेशान करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप हमें बताइए कि आप किस तरह की शरारतें करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो छिप जाते हैं। मम्मी जब थाली में भोजन लेकर आती है और हमारी पसंद की सब्जी नहीं बनती है, यानी मम्मी बनाती है करेला, तोरई, लौकी, कद्दू, तो हमें पसंद नहीं आता, तो हम चुपचाप छुप जाते हैं। कहाँ छुपते हैं? पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे, पलंग के नीचे, और तो और कभी कभी हम मम्मी के पीछे ही घूमते रहते हैं और मम्मी को पता ही नहीं चलता कि नंदू तो उनके पीछे पीछे है, और मम्मी जो है वे आगे देखती है, और कभी कभी हम अपनी दादी के पल्लू में भी छिप जाते हैं। जब मम्मी भोजन की थाली लेकर पूछती हैं, अम्मा आपने नंदू को कहीं देखा है क्या, तो दादी झट से कह देती, अरे नहीं बहू, नंदू तो यहाँ वहाँ खेल रहा होगा, गया होगा अपने दोस्तों के पास बाहर, तुम उसे बाहर जाके ही ढूंढो। जबकि अम्मा को तो पता है कि नंदू उनके पल्लू में, उनके आंचल में छिपा बैठा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और आपकी दादी सब मिलकर मम्मी से खूब मजा लेते हैं, तो कभी कभी पापा भी हमसे मजा ले लेते हैं। पापा कहेंगे कि देखो नंदू, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, और एक लिफाफा पकड़ा देंगे, और नंदू उसे खोलने के लिए बेचैन बेताब होगा, और जब लिफाफा खोला तो देखा उसमें तो कुछ भी नहीं था, अरे ये तो पापा ने हमारा उल्लू बनाया। फिर आप झूठ मूठ का नाराज होते हैं और पापा आपको खूब मनाते हैं। तब उनकी पॉकेट से निकलती है एक टॉफी और एक चॉकलेट और एक गुब्बारा, तो तरह तरह के छोटे छोटे खिलौने लेकर पिताजी आपको यानी कि पापा आपको मनाते हैं। बच्चे अक्सर बड़ों से रूठ जाते हैं, नखरे दिखाते हैं, तरह तरह के नखरे दिखाते हैं, पर पता है बच्चों, नखरे वही दिखाते हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि उन्हें कोई मनाने वाला है, इसलिए वे नखरे दिखाते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आपको ये पता हो कि आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, इनमें से कोई भी आपका नखरा नहीं उठाएगा, तो क्या आप इनसे नाराज होंगे, क्या आप नखरे दिखाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे, नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा नखरे दिखाने का क्या फायदा, झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने का क्या फायदा, जब कोई हमें मनाए ही नहीं। तो आपने ये कहानी सुनी चांद वाली अम्मा, तो आपको इस कहानी को सुनने के बाद अपनी एक नई कहानी बनानी है, और ये नई कहानी क्या होगी, नई कहानी ये है कि अगर आसमान ने झाड़ू को नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। तो आप अपनी कहानी लिखिएगा, लेकिन इसके साथ यानी कि झाड़ू से याद आया कि हम झाड़ू का इस्तेमाल करते क्यों हैं? तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान सवाल है, हम झाड़ू से घर की गंदगी साफ करते हैं, घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू का इस्तेमाल किसके लिए किया था? सफाई करने के लिए, और उन्होंने झाड़ू से आसमान को मारा था। लेकिन क्यों मारा था? इसलिए क्योंकि आसमान बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करता था। तो अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने के लिए झुकती, आसमान उनसे टकरा जाता, तो अम्मा परेशान हो गई थी, इसलिए अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज हम कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी समझने वाली बात है कि आव देखा न ताव कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब इसमें आप देखा ना ताव का मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या आप देख रहे हैं या ताव कोई चीज है? ना तो इसमें आप का कोई मतलब है ना ताव का कोई मतलब है, ये तो बस एक मुहावरा है। आप देखा ना ताव यानी कि हमें कुछ नहीं सूझा और हमने झट से वह काम कर दिया, यानी कि जब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो फिर हम आप देखते हैं ना ताव, यानी कि हम सोचते नहीं है, विचारते नहीं है और तुरंत एक काम को कर देते हैं। कहानी में एक जगह यह बात आई थी आसमान के लिए, वह बात थी पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। इसका मतलब है कि आसमान को ये बहुत पसंद था, यानी कि आसमान की आदत में शुमार हो गया था कि वह बूढ़ी अम्मा से टकराए। आपकी ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी इस आदत से मजबूर हैं? पड़ोस में रहने वाला जो मयंक है ना, वह अक्सर पेंसिल से अपने कान को खुजाता है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। वह अपनी इस आदत से मजबूर है। और मयंक के पड़ोस में जो प्रियंका रहती है, वह अक्सर हर बात पर लंबी चौड़ी गप छोड़ती है। यानी कि गप का मतलब होता है जो चीज नहीं है उसे कहना, या जो चीज अभी बहुत सामान्य सी है उसे बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे अगर किसी ने कहा कि पता है मेरे पिताजी कितने लंबे हैं, तो नंदू ने कहा हाँ मेरे पिताजी 6 फुट के हैं। प्रियंका कहेगी अरे हाँ तुम्हारे पिताजी तो 6 फुट के हैं, पता है मेरे पिताजी कितने फुट के हैं। तो प्रियंका ने कहा मेरे पिताजी तो ये लंबे हैं और पूरा 10 फिट के हैं। अब ये तो कोरी गप हुई कि कोई व्यक्ति 10 फिट का होगा। तो अक्सर बच्चे प्रियंका की इस आदत से परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रियंका अपनी आदत से मजबूर है। वह ये लंबी लंबी छोड़ती है कि सारे बच्चे उसे देखते रह जाते हैं। कहानी में एक बात और आई थी बच्चों, ये बात थी रस्साकशी की। रस्साकशी वही खेल जिसमें एक तरफ एक टीम होती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम होती है। अब आप ये कहेंगे ये तो क्या बात कही उषा दीदी ने, रस्सी के अगर दो सिरे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक सिरे पर एक टीम होगी और दूसरे सिरे पर दूसरी टीम होगी, इसमें खास क्या है। तो इसमें खास बात ये है कि हम रस्साकशी में अक्सर ये देखते हैं कि किसकी ताकत ज्यादा है, किस टीम में बहुत बल है और कौन सी टीम पूरी रस्सी को अपनी तरफ ले जाएगी। तो रस्साकशी में जब दोनों टीमें दोनों सिरे पर खड़ी हो जाती हैं, तो बीचों बीच एक रुमाल बांध देते हैं और उस रुमाल के या कपड़े के ठीक नीचे एक लाइन लग जाती है। अब करना क्या है कि दोनों टीम अपनी अपनी तरफ से रस्सी को अपनी तरफ खींचने के लिए खूब ताकत लगाती हैं। क्या क्या तरकीबें लगाई जाती हैं कि कौन कहां खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, रस्सी को पकड़ने का तरीका क्या होगा। और जिस टीम में बहुत ताकत होती है, जो टीम बहुत मजबूत होती है, वह रस्साकशी में जीत जाती है। आपने इस कहानी में यह भी गौर किया होगा कि जब आसमान अम्मा को ऊपर उड़ाए ले जा रहा था, यानी आसमान ने झाड़ू पकड़ ली थी और अम्मा ने भी झाड़ू पकड़ ली थी, तो झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा और झाड़ू का नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा। ना आसमान झाड़ू छोड़ने को तैयार और ना अम्मा झाड़ू छोड़ने को तैयार। तो अब सोचिए कि अगर अम्मा आसमान में झाड़ू पकड़े पकड़े उड़ रही हैं, तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा। और अगर डर लगा होगा तो अम्मा ने क्या किया होगा। भाई मैं तो बहुत डर जाती, अगर मैं अम्मा की जगह होती और यूं झाड़ू पकड़े रहती और आसमान मुझे ऊपर लिए जाता, तो मैं नीचे देख के घबरा जाती। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने बड़े बड़े तालाब, सब बहुत छोटे छोटे छोटे से नजर आते। जैसे जैसे मैं आसमान के साथ ऊपर चढ़ती जाती, वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता जाता। तो अब अगर सोचिए कि अम्मा ने आसमान को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसमान था कि माना ही नहीं। तो अगर अम्मा को घबराते हुए बोलना होगा आसमान से कि वह उसे छोड़ दे, तो फिर अम्मा ने यह बात कैसे कही होगी। अम्मा ने घबरा कर ये बात आसमान से यूं कही होगी, अरे छोड़, मैं मर जाऊंगी, इस बुढ़ापे में गिर गई तो टूटी हड्डी जुड़ेगी भी नहीं, अरे भाई छोड़ दे, गिर पड़ी तो क्या होगा। इस तरह से अम्मा ने यह बात घबरा कर कही होगी। और अगर अम्मा ने यही बात गिड़गिड़ा कर कही होगी तो कैसे कही होगी, तो वो कुछ इस तरह से कही होगी, अरे बेटा आसमान छोड़ दे मेरे बच्चे, मैं गिर गई तो हड्डी पसली टूट जाएगी और फिर जुड़ेगी भी नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे छोड़ दे। कुछ इस तरह गिड़गिड़ाते हुए अम्मा ने यह बात आसमान से कही होगी। और अगर अम्मा को गुस्सा आ गया तो गुस्से में कैसे कहा होगा, तो गुस्से में कुछ इस तरह से कहा होगा, ओ आसमान के बच्चे, छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, तुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं मर गई तो क्या होगा, छोड़, और अगर तू मेरे हत्ते चढ़ गया तो तेरा सा कचुम्मर बनाऊंगी ना, तू जिंदगी भर याद रखेगा, छठी का दूध तुझे याद ना दिला दिया तो मेरा नाम भी अम्मा नहीं। यूं कुछ कहा होगा अम्मा ने गुस्से में। और अगर अम्मा को कोई तरकीब सूझती तो अम्मा कैसे कहती? तो अम्मा कुछ ऐसे कहती, अच्छा ठीक है आसमान, तुझे मुझे ऊपर ले जाना है तो तू मुझे ऊपर ले चल, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ आसमान में इतने दिन रहूंगी, कपड़े लगते तो मैंने लिए नहीं, तो एक काम ये करते हैं, तू मुझे नीचे छोड़, मैं अपने घर से कपड़े लत्ते की गठरी बना लेती हूँ, फिर तेरे साथ ऊपर आसमान में रहूंगी। तो ये बात हुई तरकीब वाली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उद्देश्य के लिए अपनी बात कहते हैं तो हमारी भाषा अलग होती है, हमारे कहने का अंदाज अलग होता है, और हमें ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमसे नाराज होकर ये बात कह रहा है या फिर घबरा कर ये बात कह रहा है या फिर उसे कोई तरकीब सूझी है। तो कहानी में ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अंदाज में अपनी बात कहते हैं, लेकिन कहानी लिखना मत भूलिएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपनी कहानी बनाएंगे, यानी कि जिसमें आसमान होगा, जिसमें चांद होगा, बादल होंगे और होंगी एक बूढ़ी अम्मा। बस आपको झटपट एक कागज पर अपनी कहानी बनानी है, कल्पना कीजिए, कल्पना के घोड़े दौड़ाइए, खूब तेज दौड़ाइए और अपनी एक मजेदार सी कहानी लिखकर हमारे पास भेज दीजिए। भेजना कहाँ है? भेजना तो वही है जहाँ हम आपका इंतजार करते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप हमारा इंतजार कहाँ करते हैं? वही इस पते पर। और हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। पता एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, earlyliteracy.ncert@gmail.com। आप अपनी मजेदार कहानी बनाइए, चित्र बनाइए और हम उन्हें आपकी ही बाल पत्रिका यानी फिरकी बच्चों की इसमें प्रकाशित करेंगे। ये एक ऐसी पत्रिका है जो विशेष रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है। उनकी पत्रिका है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएं, उनके चित्र, उनके अनुभव इस पत्रिका में जगह पाएंगे। और बड़ों की क्या जिम्मेदारी है? बड़ों की जिम्मेदारी ये है कि जिन बच्चों ने कहानियां कविताएं लिखी हैं, बड़े चित्रकार उन पर चित्र बनाएंगे। तो बड़े भी काम करेंगे और नन्हे मुन्ने बच्चे भी काम करेंगे, लेकिन बड़े किसका काम करेंगे? बच्चों के लिए काम करेंगे। ये चैनल भी तो बच्चों के लिए है और हम भी बच्चों के लिए हैं। तो आज के लिए बस इतनी कहानी, और उषा दीदी आपसे बहुत जल्दी मिलती हैं एक नई कहानी के साथ, कुछ नए कामों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: सुनो शारदा
2: 90.8 FM आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
3: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: तरह मैंने यूपी रत्न बोलूं तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे सब लोग आपके जानने वाले, आपके नजदीक के लोग आप जानते हैं, तो मैं अभी आप इजाजत चाहूंगा कि आपको बाबूजी के नाम से बुलाऊं।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा के स्टूडियो में और शारदा लॉन्च पर शारदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। तो हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपके बारे में पहले हमारे श्रोताओं के लिए चाहूंगा आप बताएं कि अभी आजकल आप किन गतिविधियों में हैं और इतना बड़ा जैसे एम्पायर आप संभाल रहे हैं तो उसके साथ कैसे आपका समय व्यतीत होता है।
1: जहाँ तक निर्माण की बात है, कंस्ट्रक्शन की बात है, तो वो मैंने 5 साल से छोड़ दिया है। मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ और आज भी बच्चे मुझे चेयरमैन ही मानते हैं। कोई सलाह लेनी होती है तो ठीक है, अदरवाइज 6-7 कंपनी है गॉड्स ग्रुप के अंदर, मैं कोई ज़्यादा इंटरफेयर मेरा नहीं रहता। तो मेरा अपना कार्य जो है वो केवल लिखने का है। अब तक 16 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें मीडिया भी है और इंजीनियरिंग है और हमारी कविताएं और गद्य और पद्य दोनों है। तो मेरा काम आजकल केवल लेखन का है, अभी 2-3 किताबें और आने वाली हैं।
0: आपके जो इतना एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है उसमें अगर जब वो किताबों की फॉर्म में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद बहुत ही लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग आपको सुन नहीं पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, तो शायद वो सारी जानकारी और सारे विचार उन तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है इससे अच्छा माध्यम तो क्या हो सकता है किताबों के थ्रू, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। तो उसके आगे मैं थोड़ा सा, जैसे जो मैं आपके बारे में मैंने पढ़ा है और जाना है कि आप पहले भारत सरकार भारतीय रेल में रहे हैं बहुत वर्षों तक और उसके बाद फिर वहां से आपने अपना ये सब अपना काम करने का सोचा। तो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे जो युवा हैं या बहुत सारे लोग हैं, एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन रहता है कि हमें सरकारी नौकरी किसी तरह से मिल जाए, और आप एक अच्छे पद पर पहुंचने के बाद फिर आपने उसको छोड़ के अपना काम करने का सोचा, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए उसके पीछे क्या प्रेरणा रही और किस तरह से आपने शुरू किया ताकि बाकी लोगों को उससे कुछ और प्रेरणा और जानकारी मिले।
1: मैं समझता हूँ मेरी बात से आज के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि आज हम जगह जगह मीडिया में भी देखते हैं, हर चैनल पर देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला, हमें तो नौकरी चाहिए। अब किसी युवा से अगर आप पूछें कौन सी नौकरी चाहिए, आप गौरसंस में करोगे कि नहीं नहीं वो तो प्राइवेट है, तो वो कहेगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। आप इमेजिन करिए गवर्नमेंट कितनी नौकरियां क्रिएट कर सकती है, किस विभाग में कितने आदमियों की जरूरत है। तो नौकरी की बात जो सोचते हैं, मेरे दिमाग मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग थोड़ा सा हिम्मत ही नहीं होते, अन्यथा नौकरी की क्या बात है। नौकरी आप क्रिएट करो ना कि लोग आपके पास आए नौकरी करने के लिए। मेरे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ कि कोई भी आदमी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं हरियाणा में गया एक गाँव में, तो वहाँ एक महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 बीघे जमीन, 3 बच्चे, अब वो भूखे मरने की नौबत। तो किसी आदमी ने, आप जैसे व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम बी जो शहद की मक्खियां हैं उनके 2 बक्से ले आओ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहे पैसे मैं देता हूँ। आज उसके पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। वो किसानों की जाके हाथ जोड़ती है कि मेरे 2 बक्से अपने खेत के पास रखवा दो। और उसके बाद वो 10 आदमी उस शहद को कलेक्ट करते हैं। अब वो एक्सपोर्ट की बात सोच रही है वो महिला जो है। ये है रोजगार की बात, सोचो तो सही है कुछ। आज आप बेरोजगार हैं, क्यों बेरोजगार हैं, कुछ करिए ना। मोदी जी की बात को, आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कभी एक बात कह दी किसी अपने लेक्चर में कि भाई कुछ ना हो तो पकौड़े तलिए। आज कितने पकौड़े वाले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आपने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं। तो विचार जो है ना, आज के युवा को चाहिए विचार। पहले विचार तो क्रिएट करिए। जो विचार आता है वो भी एक हवा की तरह आता है, आपको कैच करना है उस विचार को। जैसे मेरे तो यहाँ इंजीनियरिंग में होता ही है कि सबसे पहले विचार आता है। विचार को फिर हम ऐसी रफ लाइन पर बनाते हैं, फिर उसका नक्शा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें काम शुरू करना है। मैंने अपने जीवन में काम शुरू किया तो न उस समय पूंजी थी, न श्रम था, केवल दिमाग था। कोई सहारा नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बैंक कोई लोन देता नहीं था। एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस जो आज 28 साल के अंदर चल करके यहाँ पर खड़ा है, जिसमें आज लाखों लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। और कितनी ही कंपनियां हैं, 216 कंपनी हमसे जुड़ती हैं जब हम निर्माण करते हैं। आज भी मेरी कंपनी के अंदर मैं समझता हूँ करीब 2600 आदमियों का स्टाफ है, और जिसमें 500 आदमी केवल स्टाफ वो है जो सबको करता है, बाकी फील्ड में है, और ईश्वर है वो चलाता है, सब काम चलते हैं।
0: बहुत अच्छा आपने बोला। और जो स्वरोजगार योजनाएं हम देख रहे हैं इतनी सारी आ रही हैं और इतने

0: अभी आज के टाइम में सुविधाएं उपलब्ध हैं और जानकारी देने के लिए लोग हैं, मदद करने के लिए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और प्रधानमंत्री की अपनी रोजगार योजना है, कौशल विकास योजनाएं हैं। तो अगर इन सब से प्रेरणा लेकर और इन सबका मदद से अगर अपना काम शुरू करें तो शायद स्वरोजगार से आगे जो लोग नहीं भी अपना स्वरोजगार कर पा रहे हैं तो उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं नौकरी निकल आएगी। तो बहुत अच्छा आपने तरीका बताया।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि जो आदमी छोटी सी खोखा भी लगाता है उसको भी लोन मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पहले कहाँ मिलता था? पहले तो हमें लोन नहीं मिलता था। जब मैंने काम शुरू किया 90 में तो हमें लोन के लिए हाथ जोड़ने पड़ते थे बैंकों में। आज ये है कि मेरी तो खैर कुछ ईश्वर मालिक है कि बैंक हमें फोन करते हैं कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको हम फाइनेंस करेंगे। उनकी ये हालत, क्योंकि जीवन में अगर आप ईमानदारी से किसी बात काम को करते हैं या सोचते हैं तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। आप आगे तो बढ़े, कुछ करें तो सही।
0: जरूर, वो पहला कदम लेना वो बहुत जरूरी है कि विचार अच्छा आया और फिर हाँ उसके ऊपर काम करना है और लगन से जुड़ जाए उसके पीछे तो जरूर होगा।
1: अब मंजिल की तो हम बात सोचते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमें उस मंजिल पर जाना है। जब पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे?
0: हम ये सोचते रहेंगे कि बहुत दूर है बहुत दूर है, चलना शुरू करेंगे तो अपने आप पहुंचेंगे। बिना चले तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया। और हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: सुनो शारदा में फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का। और तो हमारे साथ श्री बीएल गौर जी आज हमारे अतिथि के रूप में हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपना, एक जमाने में जब कोई मदद किसी तरह की उपलब्ध नहीं थी, कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी से बाहर आकर अपना कार्य शुरू किया और आज ये पूरा, जिसको हम एक एम्पायर बोलते हैं, रियल एस्टेट में एक जाना माना बड़ा नाम है वो बनाया इन्होंने। बाबूजी थोड़ा सा हम आपकी फील्ड जो सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है इंजीनियरिंग में, हमने देखा कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जरूर है, प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या नया सोचें, क्या करें?
1: कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो आज देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें हैं, अस्पताल है, इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। आज देश के अंदर करीब करीब 16,000 बड़े बिल्डर हैं हमारे इस लेवल के। और आप देखिए कि अगर हम आज 7 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हमारे जैसे और लोग हैं उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। ये तो हुआ बिल्डिंग निर्माण की बात। आप हाईवेज में आ जाइए, गडकरी जी के अंदर आज मैं सोचता हूँ कि देश में जो सड़कें बनी हैं, तमाम फॉरेन की सड़कें भी उसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर रही। इवन हम अपनी छोटी सी बात बताते हैं, गौर सिटी सेंटर, जहाँ गौर सिटी है, उसके सामने 430 फुट की रोड है। 430 फुट की रोड इवन किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेंगी। इस तरह का डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर बड़ी चीज़ें आ गई हैं। पहले शटरिंग लगती थी, बल्ली लगाते थे, ये करते थे, फिर उसको 15 दिन के बाद खोलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। अब मायोमैन शटरिंग आ गई है, तो अभी हम यहाँ नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से केमिकल्स आ गए हैं कि हम बजाय 15 दिन के 7 दिन में छत खोल देते हैं, तो 7 डेज का वो टाइम बचता है। आजकल जो बिल्डिंग हमारी बन रही है, हम कोई प्लास्टर नहीं करते, ना इनसाइड ना आउटसाइड, केवल फिनिशिंग होती है डायरेक्टली। पहले पेंट होता था, प्लास्टर होता था, वो सब चीजें हट गई हैं। आज ग्रीन बिल्डिंग आ गई हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का पैनल्स लगाए जाएं और उनको रोशनी जो है, उनकी जो बिजली है, वो हम सूर्य से प्राप्त करें। और दूसरी चीजें, अभी जो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूं, तो आज कितने आप देखते होंगे, अगर गाजीपुर की तरफ दिल्ली जाते हैं तो पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। हमारी किसी बिल्डिंग में आपको जीरो वेस्ट है। तो सबसे पहले ये गौरसंस ने शुरू किया बेंगलोर से मशीन ला करके। तो हर फ्लैट से हमारा कूड़ा जो है, पहले तो हम एक और सिस्टम करते थे कि हॉपर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े जैसी चिमनियां होती है ना उस टाइप की, हर फ्लैट में, तो कूड़ा जो है उसमें डाल देते थे। तो रहने वालों ने क्या वो गलती की कि उसमें कपड़ा भी डाल रहे हैं, उसमें ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो गया। अभी क्या है, हर फ्लैट के अंदर 2 ग्रीन और रेड वो बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर एक टीम जाती है, वो उनको इकट्ठा करके नीचे भेज देते हैं, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से आ जाता है नीचे। नीचे एक मशीन रखी हुई है, तो जो किचन वेस्ट है वो उसमें डाल देंगे और जो अलग चीजें हैं, प्लाईवुड है, शीशा है, वो अलग डाल देंगे। शाम को एक टीम आएगी जिसमें करीब 10-12 आदमी होंगे, तो ग्रीन वेस्ट वाले जो किचन वेस्ट है उसको वो हॉपर में डालेंगे और 2 घंटे में खाद तैयार हो जाएगी, तो खाद बोरियों में भर के वो चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और जो दूसरे हैं वो ट्रक में भर के ले जाएंगे रिसाइकल के लिए। तो देयर इज नो वेस्ट, नो कूड़ा, कोई है ही नहीं अपने किसी बिल्डिंग में, नथिंग। ये एक नई चीज है,
0: तो बहुत बड़ी समस्या हमने देखा है। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि अगर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल जाए, ड्राई और वेट अलग अलग मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक समस्या बनी हुई है।
1: जी,
0: सरकार ने भी, मैंने पीछे कुछ पढ़ा था कि बहुत इसके ऊपर नियम लगाए बनाए हैं, ये सब आपको अलग अलग करना है, डालना है, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपकी सारी सोसाइटीज में अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है,
1: सोसाइटीज में,
0: तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती होगी।
1: बिल्कुल, काफी बड़ी प्रॉब्लम।
0: 2 घंटे के अंदर वो खाद बनाना, ये भी बहुत आधुनिक तकनीक है,
1: बन के बाहर तैयार हो जाती है, उसको बोरियों में भर लिया जाता है। फिर हम जो ओपन एरिया छोड़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। ये अतुल्यम में रहती है मैडम, जो इनसे पूछिएगा, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसमें घास लगी हुई, पेड़ लगे हुए हैं, तो वो हमारा खाद वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। उसी तरह से जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं हर बिल्डिंग के अंदर, बहुत बड़ा है, सारा वेस्ट पानी वहाँ आता है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है, उससे वही पानी निकल करके कई बार तो इतना नीट होता है कि हम वॉशिंग के लिए उसके लिए यूज करते हैं, नहीं तो अपने पार्क में यूज करते हैं।
0: हॉर्टिकल्चर में वही पानी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छा है। इतना बड़ा ही फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ही लोग हैं। पहले सोचा जाता था कि आपको दीवारें बनानी है, खड़ा करना है, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट में इतने फील्ड आ गए हैं, ऑटोमेशन भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये इस फील्ड में रोजगार से रिलेटेड तो कोई इशू किसी को आना नहीं चाहिए अगर कोई इसमें काम करे और सीखे।
1: कोई इशू नहीं आता। अभी जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ किसी भी बड़े बिल्डर के यहाँ जाए, बताए जी कि मेरे पास लेबर है, मैं टाइल्स लगा सकता हूँ, ही कैन टेक जॉब, स्टार्ट कर सकता है। मैंने तो इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, आपको मैंने बताया कि करीब 17 इंस्टीट्यूट में मेरी नीम से नाली तक पढ़ाई जा रही है। करीब 100 आदमी तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं, उनका स्टार्टिंग 10-12 हजार रुपए से, 10वीं पास, ओनली 10th पास। अभी जो मैंने रिसेंटली लिखी है कैसे बने विश्वकर्मा, वो 35 मंजिल के लिए लिखी है। मैं तो चाहता हूँ जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, मैं अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूँ, उनका कोर्स तैयार हम करा देंगे, अपने यहाँ पढ़ाना शुरू कर, वहाँ से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर निकलेंगे, और हमें जितनी इंजीनियर की जरूरत नहीं है उससे 3 गुना हमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जरूरत, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर, निर्माण के अंदर कितने काम होते हैं। सेप्टिक टैंक का काम मैंने आपको बताया, वाटर ट्रीटमेंट का बताया, खाद का बताया, कंस्ट्रक्शन कितने फील्ड हैं, टाइल्स लगनी है, फ्लोर में पत्थर लगना है, डिस्टेम्पर होना है, कंक्रीट का सुपरविजन है, हर एक जगह सुपरवाइजर चाहिए। आज अगर क्वालिफाइड लोग मिले तो एक एक इंडस्ट्री जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है।
0: जो इंडस्ट्री अकेडमिया का हम बहुत सुनते हैं, जगह जगह पर इस बारे में बात होती है, इंडस्ट्री और अकेडमिक इंस्टीट्यूट को साथ में आना चाहिए, तो मुझे लगता है आपने तो उसके बारे में बहुत क्लियरली बता ही दिया है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि लोग जो इंडस्ट्री वहां पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही आकर बच्चों को बताएं। और आपने सालों साल ये काम किया है, तो आपकी लिखी हुई किताब से अच्छी जानकारी तो कहां से मिलेगी।
1: वीसी साहब या कोई लोग चाहेंगे तो मैं 5-7-8-10 किताबें भेज सकता हूं, जो कैसे बने विश्वकर्मा उसकी स्टडी करके आप चाहें तो, और मेरी फ्री गाइडेंस रहेगी जब भी आप चाहें।
0: बहुत अच्छा आपने बताया, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: फिर से स्वागत है सुनो शारदा के श्रोताओं का। और आज हम श्री बी एल गौड जी से बातचीत कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या नए रोजगार किस तरह से हो सकते हैं, क्या बच्चों को सीखना चाहिए। बाबू जी, एक चीज़ हमने इंजीनियरिंग की और कंस्ट्रक्शन की तो बहुत बात की, लेकिन अभी जैसे आपने भी बताया कि साहित्य की तरफ अभी आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा हुआ, कई किताबें आपने लिखी हैं, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताइए कि अभी आपकी नई किताब कौन सी आई है और आप किस दिशा में आगे लिख रहे हैं।
1: नई किताब तो मेरी बीता सो अनबीता मेरी आत्मकथा है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो बीत कर भी नहीं बीतते हैं। ये आप तो युवा हैं, सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आए होंगे कि वो दिन बीत गए लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो मेरी किताब का शीर्षक है बीता सो अनबीता है, ब्रैकेट में आत्मकथा। उसमें मैंने कैसे अपना जीरो से काम शुरू किया, क्या हुआ, कविता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो एक बड़ा एक शेर है किसी का कि दर्द को दिल में दे जगह है, दर्द को दिल में दे जगह है अकबर, इल्म से तो शायरी होती नहीं। अगर मैं MSc कर लूँ तो शायर नहीं बनूंगा। शायर बनने के लिए तो दिल में अगर कोई फीलिंग होगी, मानवता के लिए, किसी के लिए कोई दर्द होगा, मोहब्बत होगी, तभी आप शायर बन पाएंगे, कवि बन पाएंगे।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सुनो
2: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।

जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। उनकी आवाज में वजन है, संवादों में सच्चाई है और अभिनय में एक ऐसी गहराई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। कुछ कलाकार पर्दे पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते, वो किरदार में ऐसी जान डाल देते कि दर्शक उस किरदार को कभी भूल नहीं पाते। एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज में वजन है, संवादों में सच्चाई है और अभिनय में एक ऐसी गहराई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। जी हाँ, ऐसी एक शख्सियत है नाना पाटेकर, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने अभिनय की एक अलग पहचान दी है। नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर मैं हूं गगन आपके साथ और आज हम याद कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब को। जाहिर सी बात है कि जब मैंने ये कहा कि हम याद कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब को, तो इसका मतलब हम सब जानते हैं कि नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह सुबह उनकी खबर हमें मिली। पूरी इंडस्ट्री में, उनके चाहने वालों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। हर कोई जानने के लिए उत्सुक था, हर कोई समझना चाहता था कि अपने उस क्रांतिवीर अभिनेता को आखिर हुआ क्या। फिल्म तिरंगा के जरिए जो एक संदेश वो देते हैं, क्रांतिवीर के जरिए वो एक संदेश देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हमारे दिल दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती है वो फिल्म, उनका अभिनय। तो सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से नाना पाटेकर साहब को श्रद्धांजलि।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। कहते हैं कि अभिनय सिर्फ संवाद बोलना नहीं है, अभिनय वो है जहां कलाकार अपने शब्दों से ज्यादा अपनी आंखों से बोलता है, जहां आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल के अंदर उतर जाती है। और जब बात हो ऐसे कलाकार की जिसने अपने हर किरदार को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि उसे जिया है, तो एक नाम अपने सामने आता है, वो है नाना पाटेकर का। वेलकम बैक, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आज हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब की, भारतीय सिनेमा के अत्यंत दिग्गज और सम्मानित अभिनेता की, जिन्हें उनकी बेमिसाल अभिनय शैली के लिए जाना जाता है। अपनी कड़क आवाज, अनोखे डायलॉग डिलीवरी और सहज अभिनय के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग और अमिट पहचान बनाई है। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया फिल्म तिरंगा का, क्रांतिवीर का, और अब जिक्र करना चाहूंगा परिंदा जैसी फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। वो केवल एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं बल्कि एक उदार सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने नाम फाउंडेशन के जरिए किसानों की मदद की। भारतीय सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रंगमंच से लेकर बड़े पर्दे तक नाना पाटेकर का हर अंदाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला रहा है। सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से नाना पाटेकर साहब को श्रद्धांजलि।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सुनो शारदा। एक अभिनेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? लोगों को विश्वास दिलाना कि जो इंसान उनके सामने खड़ा है वो कोई कलाकार नहीं बल्कि वो किरदार है। कभी वो गुस्सा है, कभी मजबूरी, कभी दर्द, कभी व्यवस्था से लड़ता हुआ एक आदमी, और कभी ऐसा इंसान जो टूट कर भी खड़ा रहता है। नाना पाटेकर के अभिनय की ये खासियत है कि उनके किरदार पर्दे पर कभी खत्म नहीं होते, वो दर्शक के मन में रह जाते हैं। वेलकम बैक, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस मंच के जरिए हम उनको दिल से सलाम करते हैं। भारतीय सिनेमा के उस अंगारे को जिसने अभिनय की परिभाषा को अपने ढंग से लिखा, जैसा उन्होंने चाहा, कहीं कोई रुकावट आई तो लोगों को विश्वास दिलाया कि अच्छा अभिनय आपको मिलेगा, अच्छा लेखन आपको मिलेगा, और विश्वास दिलाया कि डायलॉग के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब की। रंगमंच की मिट्टी से उठकर बड़े पर्दे पर अपनी कड़क आवाज और बेमिसाल डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने हर दर्शक के रोंगटे खड़े कर दिए। परिंदा, क्रांतिवीर और तिरंगा जैसी फिल्मों में उनका निभाया हुआ हर किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ पर्दे के नायक नहीं रहे, उन्होंने नाम फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद की। नाना पाटेकर साहब, आज सुबह उनका हृदय गति रुकने की वजह से देहांत हो गया।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सुनो शारदा। कुछ संवाद सिर्फ संवाद नहीं होते, वे एक दौर की आवाज बन जाते हैं। नाना पाटेकर की आवाज में वही ताकत हमें बार बार सुनाई देती है। उनके अभिनय ने हमें सिखाया कि संवाद की ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं। नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम पर मैं हूं गगन आपके साथ, और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के, मराठी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अभिनेता स्वर्गीय श्री नाना पाटेकर साहब को। आज सुबह उनका देहांत हो गया, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन सच बात है जो अक्सर हमने सुना है कि इंसान अपने काम की वजह से जाना जाता है। सोचिए कि आपको आपके परिवार के लोग ही जानते हैं। आपने मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मुझे दुनिया जाने। हम कुछ अच्छा करें, बेहतर करें ताकि समाज हमें जाने। जी हाँ, शायद यही एक वजह है कि बेहतर अभिनय की वजह से, सामाजिक फिल्मों की वजह से अभिनेता नाना पाटेकर साहब को हम याद कर रहे हैं। आज इस मंच पर हमारा हर शब्द, हमारा हर सलाम उस महानायक के नाम है जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और अभिनय को एक नई आग दी। और हम सबके नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने भारतीय सिनेमा का वो फक्कड़ और बेबाक नट सम्राट जिसने अपनी कड़क आवाज, बेजोड़ डायलॉग्स और आंखों की शिद्दत से दर्शकों के दिलों पर राज किया। क्रांतिवीर को नहीं भूल सकते, क्रांति

हीर के वो डायलॉग, वो कलम वाली बाई है? आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, कुछ इस तरीके का डायलॉग। वो डायलॉग एक सन्नाटा पैदा करता है, एक सिरहन पैदा करता है। वो डायलॉग सोती हुई आत्मा को जगाता है। क्रांतिवीर फिल्म का डायलॉग हो या फिल्म तिरंगा के उस डायलॉग की बात हो, उस अंगारे ने अपनी आखिरी दौर में भी वनवास, जो कि 2024 में रिलीज हुई, हाउसफुल 5 2025 में, ओ रोमियो 2026 और वेब सीरीज संकल्प के जरिए अभिनय की अद्वितीय मिसाल उन्होंने पेश की। 3 बार आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजे गए। उनकी कमाई का जिक्र होता है तो 90% हिस्सा उन्होंने अपनी कमाई का दान कर दिया और किसानों के वो सच्चे मसीहा बन गए। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी ईमानदारी, उनकी कला हमेशा अमर रहेगी।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।
2: गलत के सामने चुप रहना आसान है, लेकिन सही के लिए खड़ा होना यही असली हिम्मत है। आदमी बड़ा अपने कद से नहीं होता है, बड़ा होता है अपने फैसलों से और जिंदगी से। जिंदगी हर दिन हमें एक नया किरदार देती है, सवाल सिर्फ इतना है हम उसे निभाते कैसे हैं। कुछ इस तरीके का डायलॉग, कुछ इस तरीके के कॉपी पेस्ट करने का मैंने छोटा सा प्रयास किया, लेकिन सच बात है जब यही डायलॉग हम देखते हैं कि नाना पाटेकर साहब किस अंदाज में इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो बस उनको हम देखते ही रह जाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं गगन। सुनो शारदा 90.8 FM पर आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं नाना पाटेकर साहब को। आज सुबह सुबह जब इंसान को ये खबर मिले तो निश्चित तौर पर उसका दिल दुखता है, दिन खराब होता हुआ नजर आता है। ये हमने सुबह सुबह क्या सुन लिया, हम सबकी आंखें नम हो गई, कुछ काम करने का मन ही नहीं किया, बस हम याद करने लगे नाना पाटेकर को, उनके काम को, उनके अभिनय को, उनके डायलॉग्स को। जैसे ही हमें पता चला कि गोवा में दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो हम सब परेशान हो गए। हम सब सर्च करने लगे कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। नाना साहब का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है उनके असली नाम का, विश्वनाथ पाटेकर। और इनका जन्म का जब जिक्र मैं आपको कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरूद जंजीरा में एक साधारण मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक जीवन बेहद सादगी भरा रहा, जिसे उन्होंने हमेशा मीडिया के चकाचौंध से दूर रखा। सच बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आखिरी इंटरव्यूज में जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चकाचौंध से दूर भाग जाना चाहते हैं, वो शांति की ओर जाना चाहते हैं, जहां उनको चंद लोग जाने पहचाने, इतने लोग कि सिर्फ आगे तक वो लेकर जा सके, यानी कि शमशान घाट तक लेकर जा सके, ऐसा उन्होंने कहा। वो चकाचौंध से दूर हमेशा जाना चाहते थे। चलिए, जब मैं फैमिली का जिक्र कर रहा हूं तो इनके पिता का जिक्र होता है। उनके पिताजी का नाम गजानन पाटेकर साहब था। वे एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे, एक चित्रकार थे। उन्हें नाटकों का बहुत शौक था। उन्होंने ही नाना को अभिनय के लिए प्रेरित किया था। जब नाना 28 वर्ष के थे तब उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनकी माता का नाम निर्मला पाटेकर, वो एक कुशल गृहिणी थी, यानी कि हाउसवाइफ थी। नाना अपनी माँ के बेहद करीब थे। वर्ष 2019 में 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नाना कहते हैं कि मेरे भाई बहन चले गए और जब मैं जाऊंगा तो अपनी अम्मा से, माँ से मिलूंगा। वो बताते हैं कि नाना पाटेकर के माता पिता की कुल 7 संतानें थी, जिनमें से आर्थिक तंगियों और बीमारियों के कारण 5 भाई बहनों का बचपन में ही निधन हो गया था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में भी उन्होंने अपने एक भाई को खो दिया था। इनकी पत्नी का, इनके विवाह का जिक्र होता है तो 1978 में नीलकांति यानी नीलू पाटेकर से इनका विवाह हुआ था। नीलकांति एक बैंक अधिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन मराठी अभिनेत्री और लेखिका भी रही हैं। उनके विचारों और स्वभाव में अंतर के कारण दोनों काफी समय से बिना तलाक लिए अलग रहते थे, लेकिन दोनों के बीच आपसी सम्मान हमेशा बना रहा। बच्चे नाना और नीलकांति के 2 बेटे हुए। उनके बड़े बेटे दुर्वासा का महज 2.5 साल की उम्र में गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसने नाना को गहरे सदमे में डाल दिया था। उनके दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर है, जो फिल्म डायरेक्शन यानी निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास नाना पाटेकर साहब के जीवनी के बारे में जानने का नजदीकी से हमें मौका मिला। तो आज हमने श्रद्धांजलि दी बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा के सफल अभिनेता नाना पाटेकर साहब को, और ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। सच बात तो ये कि जिंदगी चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, बस जिंदगी का सार यही है कि कुछ अच्छा कर कर जाएं, ताकि हमें कुछ लोग याद करें हमारी अच्छाइयों के लिए। वाकई बेशक किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, अपनी 100% आय में से 90% हिस्सा किसानों के लिए उन्होंने दान दे दिया, तो ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को हम क्यों ना याद करें।
1: दिल से सलाम करते हैं। सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से नाना पाटेकर साहब को दिल से सलाम, श्रद्धांजलि।
0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
1: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
2: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारे।

ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों

प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह कि बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मैरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो यार शहद दे दे।
1: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बार बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडाशय कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
2: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
3: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.

और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊं, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूं।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊं और फोटोग्राफी करूं। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊं। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: www.sharda.ec.in.
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो
1: शारदा 90.8 FM आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
2: पर्दे पर अपने दमदार अभिनय और गूंजती आवाज से दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता नाना पाटेकर जी को सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी अदायगी और आपके संवाद हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
2: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग,

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
2: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
2: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर
2: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कसम है।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: जब तू इस घर में खुशियाँ बनकर आई।
1: तुम रहो स्वस्थ और सुरक्षित, हमको यही बात की चिंता सताई।
2: अरे कौन है वो जो हमको समझाए कैसे करें हम इनकी देखभाल।
0: अरे चिंता ना करो अम्मा, मुन्नी अस्पताल में हुई है इसलिए 7 बार हम इस घर के चक्कर लगाएंगे, नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी। मुन्नी की जांच मैं करूंगी पूरी, जांचूंगी वजन और तापमान, रखूंगी आंख नाक और त्वचा का भी ध्यान। कितनी बार कब और कैसे अपना दूध तुम पिलाओगी ये मैं तुम्हें बतलाऊंगी। मुन्नी को छूने से पहले हर बार कैसे धोना है हाथ ये भी सबको सिखलाऊंगी। छोटी सी है मुन्नी, इसे तुम 7 दिन तक बिल्कुल मत नहलाना, सीने से लगा के रखना और कपड़े खूब पहनाना। 15 है खतरों के लक्षण, रखना तुम इन सबका ध्यान। देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना, तुरंत मुन्नी को SNCU ले जाना।
3: करती है पते की बात, ये तो सुघर सयानी है, बच्चे के होने पर ये तुम्हारे घर आनी है।
0: 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन मैं बच्चे की जांच करने आऊंगी, क्योंकि बच्चे की नियमित जांच से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।